फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 1701। हमारे स्टूडियोज में बस एक मिनट रह गए हैं एक बजने में। स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विस्पानी सुन रहे हैं। रेडियो विस्पानी आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। रहे शनिवार मस्ती म्यूजिक। जो लोग आज पहली बार हमें सुन रहे हैं, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्पानी पर। इसी के साथ जो लोग आज अपनी जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह है, कुछ भी खुशियां आपके साथ है, आपको हम यहां से बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद भेज रहे हैं। हाँ, अगर आप रेडियो विस्पानी के साथ शेयर करना चाहते हैं 3279-1701 हमारा स्टूडियो डायरेक्ट लाइन नंबर है, नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं। आज आपके साथ सो होप एवरीवन इज जोइंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड आउट देयर।

फिर दोस्तों आज हम कुछ नए पुराने और कुछ लेटेस्ट गीत लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। हरा भरा एक और मस्ती भरा प्रोग्राम आप सभी के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं इस जिंदगी को हंस के जीना सीख लो, गम खुद ही पीछे छूट जाएगा, बस जीना सीख लो। वैसे जिंदगी को क्या, जिंदगी हर रोज एक नया इम्तिहान लेती है, कभी हंसाती है तो कभी जान भी लेती है, और सिखा कर हर मोड़ पर, हर मोड़ से गुजरती है जिंदगी।

दोस्तों, अगर मुस्कुरा कर देखो तो पूरी दुनिया हसीन नजर आएगी। और ये जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें हर कदम पर एक नई खुशी दे जाएगी। हैप्पी वीकेंड एवरीवन।

बात पर सगी दोस्तों, और चलते हैं। देखिए, अगर अभी आपने चुरिन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो बिजवानी आईएम पर। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 7 मिनट हो गए हैं 1 बजकर, और आप सभी को पता है कि ये रक्षाबंधन का महीना भी है, यानी कि 28 अगस्त को राखी का त्यौहार है। तो अभी से ही लोग रक्षाबंधन बांधने लगे हैं। चलते हैं, हमें कुछ रिक्वेस्ट भी किया गया है कि राखी पर भी कुछ इस मंथ हम गीत प्ले करें, लेकिन चलते हैं। आज का जो पहला गीत है राखी पर, हम आपके लिए लेकर आए हैं, और आप इसे सुनने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। राखी, धागों का त्योहार।

0: रेडियो विश्वानी आपकी अपनी पहचान और समय हुआ हमारे स्टूडियोज में। दोस्तों इस वक्त 10 मिनट हो गए हैं 1:00, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी। अयम,
1: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
0: और आपको पता है कि सावन का महीना है ना, तो सावन पर भी कुछ सुनना गीत बनता है। तो चलते हैं सावन के महीना पर, एक बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं। शायद ये गीत आप सभी को पसंद है।

और फिर आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन पर एक बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना, एक नया अंदाज में, यानी कि नए आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी, आपकी अपनी पहचान।

0: What if you can?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान है दोस्तों। समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 20 मिनट हो गए हैं 1:00 चलते हैं हम फरमाशी प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग जो है यहाँ पर अपना गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि सावन का महीना है, सावन में हम किसको याद करते हैं? शिव भगवान को, यानी कि भोले बाबा का है सावन का महीना। तो इसी पर एक बहुत प्यारा सा गीत है और हमारे साथ शामिल हो गई है ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो USA, आपके लिए बहुत प्यारा सा शिव सावन भजन।

0: शिवा हरे बिरफुल शिवा पर्यानी सावन पर शिवा भजन आपने सुना। और इसके लिए हमारे पास यानी हमारे साथ शामिल हो गई थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। यहाँ पर हमारे पास दो तीन मैसेजेस ऑलरेडी आए हैं, पीपल रियली एंजॉय दिस भजन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल, आई न्यू एवरीबॉडी विल लव इट। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ाते हुए फरमाइशी प्रोग्राम। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम चलते हैं लेस वेगस की ओर। हमारे साथ जुड़ चुकी वहां से दक्षा सोलंकी है। दक्षा, चलते हैं आपके लिए, सुनते हैं अगला गीत। साथ में है दिनेश सोलंकी।

मैं शहजगीत को आप सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में, लेकिन आज एक नए अंदाज में, नए आवाज में, लेटेस्ट वर्जन पर आपने सुना, हमारा साथ दे रही यानी कि हमारा प्रोग्राम सुन रही है लास वेगास में दिनेश और दक्षा सोलंकी। हम चलते हैं दोस्तों सिडनी की ओर। जी हाँ, ग्रीन एका सिडनी से हमारे पास कॉल है रजीन और मालती प्रसाद की ओर से। आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: अच्छा दोस्तों, फरमाइश करने वाले थे इस गीत को रजन और मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर सिडनी।
1: इट्स टाइम टू कंप्लीट योर सेंसस। ऑन ट्यूसडे 11th ऑफ अगस्त 2026, एवरीवन इन ऑस्ट्रेलिया विल बी काउंटेड। दिस इंक्लूड्स सिटीजंस, परमानेंट रेजिडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेंपरेरी वीजा होल्डर्स एंड विजिटर्स। यू कैन टेक पार्ट ऑनलाइन, ऑन अ पेपर फॉर्म और विद हेल्प इफ यू नीड इट। सपोर्ट इज अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: तुम चलते हैं द गैप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जहां से हमारे पास कॉल है ध्रुव और अरुणा की ओर से, और आपके लिए पेश है आपका फेवरेट सॉन्ग।
5: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: प्यारे से गीत अभिजीत की आवाज में आपने सुना, जिसे फरमाइश करने वाले थे ध्रुप एंड अरुणा फ्रॉम द गैप।
1: यार की हर खुशी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। और समय हुआ दोस्तों 2:45 बजने वाले हैं, और आज आपका हमारा साथ होगा ठीक 3 बजे तक, और आपके साथ सो हम चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। हम चलते हैं पेरमाटा सिडनी की ओर दोस्तों। पेरमाटा सिडनी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रॉबिन और उषा, आप दोनों के लिए अगला गीत। यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी।

0: अच्छा दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे परमोटर सिडनी से रॉबिन और उषा। इस गीत में आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: बिजली का बिल शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: चलते हैं दोस्तों अगली गीत की ओर। हम बढ़ते हैं किडरून पार्क की ओर, और किडरून पार्क से फरमाइश है हमारे पास जोनी और सविता की ओर से, आप दोनों के लिए लेटेस्ट।

इस गीत को फरमाइश किया था कैरून पार्क से जूनियर सबिता। देखिए दोस्तों हमारे साथ कौन सफर पर है। जी हाँ, इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हमारे साथ सफर पर है अनवर और शेरुल फ्रॉम आज योर फिल। और आप सुनना चाहते हैं अगला गीत, एंजॉय योर आफ्टरनून ड्राइव। है शनिवार, मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी। हम हमारे स्टूडियोज में दो ही बज चुके हैं।

बाद पैरासर्गसल सॉन्ग इसकी फरमाइश करने वाले थे अनवर और शहरुल, जो इस वक्त हमारे साथ ड्राइव पर है। और किसी को भी गीत गजल गीत अच्छी लगी हमारे पास इसके लिए मैसेज आया। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 17.1 किलोहर्ट्ज़ पर। 4 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में 2 बजकर, और हमारा साथ है आपका ठीक 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी IM फॉरेस्ट लेक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फॉरेस्ट लेक से फरमाइश है हमारे पास हफीज अली खान और जबीदा खान की ओर से, आप दोनों के लिए अगला गीत।

को फरमाइश करने वाले थे हफीज अली खान, जाबिदा खान फ्रॉम फॉरेस्ट लेक। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर दोस्तों, विनम की ओर। लक्ष्मी जहाँ मैं सुन रही है, लक्ष्मी आपके लिए अगला गीत सुनते हैं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, हमारे पास दो तीन कोर्स इस गीत के लिए एक बार फिर आ गए हैं. पीपल आर रियली एंजॉयिंग द प्रोग्राम, दैट मेक्स मी फील सो गुड हियर, नॉट सिटिंग अलोन बाय मायसेल्फ. थैंक यू लक्ष्मी फॉर लविंग द सॉन्ग टू. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी 1701 किलोहर्ट्ज़ पर और 2:15 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर. आज आपके साथ सुए है शनिवार मस्ती म्यूजिक, साथ है हमारा आपका ठीक 3 बजे तक. चलते देखे एक छोटी सी कहानी हमारे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए. कहानी है या सच्ची है मुझे पता नहीं है, लेकिन इसे मुझे पता है सभी को कुछ ना कुछ दिमाग में. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान. तो चलते हैं इस छोटी सी कहानी को सुनते हैं. एक बार दोस्तों, एक गांव में एक महिला रोज अपने घर में 4 रोटियां बनाती थी. 3 रोटियां परिवार के लिए और 1 रोटी वह दरवाजे के बाहर रख देती थी. तो एक दिन दरवाजे के बाहर रखती थी. उसका बेटा अक्सर पूछता, माँ यह रोटी आप किसके लिए रखती है? माँ मुस्कुराते हुए कहती, पता नहीं बेटा, जिसे जरूरत होगी उसको ही ये रोटी काम आएगी. एक दिन घर में खाने के लिए केवल 3 रोटियां थी. बेटे ने कहा, माँ आज वो रोटी घर में ही रख लो. लेकिन माँ ने प्यार से जवाब दिया, बेटा जरूरत के समय भी बांटना सीखो, तभी सच्ची खुशियां समझ पाओगे. उस शाम एक भूखा बच्चा वहां से गुजरा और वह रोटी लेकर चला गया. अगले दिन वही बच्चा अपनी माँ के साथ वापस आया. उसकी माँ ने कहा, बहन कल आपकी 1 रोटी ने मेरे बच्चे को भूखा सोने ही नहीं दिया. तो इसके बाद में तो उसके भगवान आपको हमेशा खुश रखे. महिला की आंखें भरे. उसने बेटे से कहा, देखा बेटा, हमारे घर की 1 रोटी किसी दूसरे घर की पूरी खुशी बना सकती है. तो चलते हैं सैक्रामेंटो USA की ओर दोस्तों. फिर वैसे हमारे पास मैक्स प्रसाद की ओर से मैक्स सुनते हैं आपके लिए अगला गीत.

शामिल हो गए थे दोस्तों मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। चलते हैं एक बार और, अनवर और शेरुल हमारे साथ शामिल हो गए हैं, ड्राइव पर है और प्रोग्राम को एंजॉय करें। आप सुनना चाहते हैं सुहानी रात।

0: सुहानी रात की फरमाइश करने वाले थे अनवर और शहरुल, जो इस वक्त हमारे साथ सफर पर है। शहरुल, थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर फीडबैक।
1: कर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी शनिवार मस्ती म्यूजिक में भी सैटरडेज फ्रॉम 1 PM शनिवार मस्ती म्यूजिक।

चले देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ शामिल हो गए विजय नौकामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप दोनों के लिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: तू यहाँ क्या कर रही है?
1: तेरी वेडिंग क्रैश कर रही हूँ, प्रॉब्लम है?
2: तूने पी रखी है?
1: तेरी शादी की गम में थोड़ी सी, तू पिएगा?
0: पागल है क्या तू? अगर मेरी मम्मी ने तुझे यहाँ देख लिया तो।
1: अरे यार, वेडिंग डेकोरेशंस देखने आई थी और सोचा तुझे एक लास्ट गुड बाय।
2: तो चल यहाँ से, चल
0: वहां से नहीं,
2: यहाँ से।

0: really.
1: पास फरमाइशाएं थी इस गीत के लिए वहाँ सेक्रमेंटो यूएसए से विजयन और कामनी की ओर से। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर, यह शनिवार मस्ती म्यूजिक दोस्तों, साथ है हमारा आपका 3 बजे तक।

जाते हैं जो लोग को भी ये गीत जिन्हें भी गीत पसंद है आप सभी को इस गीत में हम शामिल कर रहे हैं। फॉरेस्ट लेक से हाफिज अली खान, जबीदा खान, साथ में शहरुल अरवर फ्रॉम आज फिल, और पास मैसेज है, कॉल है हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से विजय डॉग कामनी की ओर से। एवरीबॉडी इज वेलकम इन

कवाली सॉन्ग इस गीत के लिए हमारे पास बहुत सारे से ऑलरेडी मैसेजेस आ गए हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर लविंग इट। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, बस बहुत समय नहीं बचा हमारे पास, और याद रखिएगा कि जो कल का मेरा शो है 2:30 शाम का सफर पर आपका हमारा साथ होगा। जैसे आपको पता है कि राखी का त्यौहार भी चल रही है, आपने इस प्रोग्राम में राखी गीत सुने, साथ साथ में सावन के भी जो त्यौहार महीना चल रही है सावन के गीत भी सुने। तो देखा जाए तो अगर आप सावन का गीत कुछ फरमाइश करना चाहते हैं टुमोरो राखी पर भी, यू मस्ट वेलकम। लेकिन आज मैं अपना प्रोग्राम शुरुआत जैसे मैंने शुरुआत किया था, खत्म ही करना चाहती हूँ ब्यूटीफुल सावन शिव भजन से आप सभी के लिए।

और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में 3 ही बजने वाले हैं। साथ हमारा आपका आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात है टुमारो 2:30 से शाम के सफर पर। एंड होप एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल वीकेंड। कल तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ। ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense.

रिस्क योर लाइफ, टॉक टू अतुल बिफोर यू टॉक टू पुलिस। अज्जी कॉन्टैक्ट करो अतुल जीनो ऑन 0400-234-235, दैट इज 0400-234-235।

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो मेरे महारथियों, जिन्होंने पूरे हफ्ते लगन से काम किया है और अब अपने वीकेंड्स को एंजॉय कर रहे हैं। सो अ वेरी हैप्पी शनिवार, बोले तो हैप्पी सैटरडे बॉस। वेलकम, स्वागतम एक बार फिर से आपके सैटरडे वाले शो सैटरडे डिलाइट में, जिसमें मैं हूँ आपकी सैटरडे वाली पार्टनर सताक्षी रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर आज एक बार फिर से आपके साथ। तो भैया, शनिवार शुरू हो चुका है, वीकेंड शुरू हो चुके हैं और वीकेंड मोड पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज जो सुबह अलार्म बजा, उसको बंद करने के बाद वापस चादर तान के सोने में जो परम सुख मिला, उसका कोई मुकाबला है क्या? नहीं ना। तो पूरे हफ्ते ये अलार्म हमें किसी विलन की तरह डराता है, लेकिन सैटरडे को वही अलार्म बेचारा एकदम असहाय महसूस करता है। उसे लगता है यार, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये बंदा तो मुझे डरा रहा है। मंडे टू फ्राइडे हम घड़ी की सुइयों पर भागते हैं, पर सैटरडे वो दिन होता है जब हम घड़ी से कहते हैं, अरे भाई जरा धीरे चल, आज मेरा दिन है। तो आज के शो में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस ढेर सारी मस्ती, हल्की फुल्की बातें और वीकेंड वाली वाइब्स आपके साथ रहने वाली हैं और मेरे साथ रहने वाले हैं वीकेंड वाले कुछ बढ़िया से गाने। तो बस अपने चाय के कप को सुकून के साथ उठाइए, सोफे पर आराम से टेक लगाइए और शुरू कर लीजिए अपने वीकेंड वाले शो को सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर सैटरडे डिलाइट।

वेलकम बैक वंस अगेन। अगर अभी आपने रेडियो ब्रिस्पानी को ट्यून किया है तो बता दूं कि आप सुन रहे हैं सैटरडे लाइट मेरे साथ। वैसे सैटरडे क्या हर एक पल बहुत खूबसूरत होता है, चाहे इसकी सुबह हो या दोपहर। भाई आफ्टरनून टाइम वो टाइम होता है जब इंसान ये तय नहीं कर पाता कि वो लंच करे या लेट ब्रेकफास्ट करे, क्योंकि वीकेंड्स हैं तो कुछ लोग तो उठते ही लेट हैं और कई लोग तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही ये सोचते रहते हैं कि कॉफी या चाय के साथ कुकीज खा ली जाए या फिर कुछ स्पेशल मंगवा लिया जाए बाहर से। तो देखिए वीकेंड का पहला नियम यही है कि नो रूल्स। आज डाइट चार्ट को अलमारी में बंद कर दीजिए और अपने मन की सुनिए। तो आज अगर 2-3 घंटे बिना कुछ किए सिर्फ अपने छत को घूरने का मन है तो घूरिए। इसे आलस नहीं, इसे माइंडफुल रेस्ट कहते हैं। और आपके माइंडफुल रेस्ट के नाम मैं प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और सताक्षी को सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट में रेडियो ब्रिस्पानी पर।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट। जी आपके सैटरडे को आपके लिए स्पेशल खास और बेहतरीन बनाने की सताक्षी की पूरी तैयारी है। फिलहाल एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए कुछ मस्ती के ये पल इस वक्त हमारे वीकेंड वाले शो में किसी अपने खास के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन।

0: अच्छा एक बात बताइए, फ्राइडे को जब शाम को आप घर पहुंचते हैं और आपके बॉस का मैसेज आता है, हाय क्विक चेक, क्या आपको भी उसे देखकर अचानक ठंडे पसीने छूटने लगते हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने वीकेंड की हवाई निकाल दी हो। बॉस लोग भी ना कमाल के प्राणी होते हैं, मुझे लगता है पूरे हफ्ते कहेंगे वीकेंड पर आराम करो, वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है, पर सैटरडे को अचानक से आपको एक मेल आ जाता है, नॉट अर्जेंट बट प्लीज रिव्यू व्हेन यू गेट अ चांस। अब बंदा ये सोचे कि अर्जेंट नहीं तो भेजा क्यों, और भेजा है तो बिना पढ़े चैन कैसे आए। तो देखिए बॉस, किसी बड़े ज्ञानी ने कहा है कि ऑफिस की दुनिया में तीन ही मौसम होते हैं, पहला अरे इस हफ्ते बहुत काम है, दूसरा अगले हफ्ते डेडलाइन है, और तीसरा सैटरडे को लॉगिन मत करना पर लैपटॉप साथ रखना। लेकिन दोस्तों आज है सैटरडे और आज बॉस के मेल का जवाब देने की बजाय अपने मूड का रिप्लाई पहले दीजिए। जो काम फ्राइडे को खत्म नहीं हुआ वो मंडे से पहले वैसे भी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए आज ऑफिस के भूत को बंद कीजिए और वीकेंड को एंजॉय कीजिए। और सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ, आपके वीकेंड वाले शो को आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन पर, और इन वीकेंड की वाइब्स, इसका मूड और इसकी रोमानियत आगे भी जारी रहेगी। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन, मुझे सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट।

करते हैं वीकेंड्स पर घर घर की कहानी का, यानी वीकेंड्स पर होने वाली हस्बैंड वाइफ की वो खट्टी मीठी नोक झोंक जिसके बिना कोई भी वीकेंड अधूरा माना जाता है। भाई हफ्ते भर पति सोचता है कि वीकेंड को दिन भर सोऊंगा और पत्नी सोचती है कि वीकेंड पर पूरे घर की सफाई करवाऊंगी, पंखे भी तो पोछने हैं, घर को भी ठीक करना है। और बस यहीं से शुरू होता है असली वीकेंड ड्रामा। पति महोदय जैसे ही कॉफी की चुस्की लेकर अपने फोन को उठाते हैं, आवाज आती है, जरा सुनना, ये सोफे का कवर बदल दो और पंखे पर कितनी धूल जमी है जरा देख लो, या फिर वो जो तुमने अपनी वार्डरोब ठीक नहीं कर रखी है ना, उसे जरा देखो, तुम्हारी फाइल सारी बिखरी पड़ी हुई है। और सबसे बड़ा धर्म संकट तब आता है जब पत्नी पूछती है आज खाने में क्या बनाऊं। पति मासूमियत से कहता है भाई कुछ भी बना लो। अच्छा तो रोज का दाल चावल बना लूं? अरे नहीं यार, शनिवार है, आज वीकेंड्स हैं, आज सैटरडे है, कुछ स्पेशल बनाते हैं। ये करते करते एंड में वही बनता है जो बिचारी पत्नी चाहती है, लेकिन इसके डिस्कशन में लग जाते हैं पूरे 2 घंटे। लेकिन सच कहूं, इस नोक झोंक में ही तो असली प्यार छुपा है। पूरे हफ्ते की भाग दौड़ के बाद ये सैटरडे और इस सैटरडे के शाम को बैठकर साथ चाय पीना, एक दूसरे पर छोटी मोटी बातों को लेकर हंसना और थोड़ा चिढ़ना, यही तो रिश्ते को ताजा रखता है। और इसी ताजगी के नाम ये अगला ट्रैक है, इसे सुनिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी आपके वीकेंड वाले साथ को सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके वीकेंड्स है और आपके वीकेंड्स को खास बनाने की हमारी तैयारी जोरों पर है। एक और ट्रैक सुनिए और अगर आप अभी रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ चिल करने की सोच रहे हैं या फिर अपने पार्टनर का हाथ अपने हाथ में लेकर निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पर, तो ये गाना सिर्फ आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

पूरे हफ्ते आप भागते रहते हैं और सैटरडे जब आपकी लाइफ में आता है तो ये वक्त होता है थोड़ा सा ठहरने का, यानी सेल्फ केयर का। पूरा हफ्ता हम दूसरों के लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, लेकिन वीकेंड्स पर अपने लिए जरूर थोड़ा सा वक्त निकालिए। यू नो, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ महंगे स्पा में जाना या स्किन केयर करना नहीं होता है। सेल्फ केयर का मतलब होता है अपनी पसंद की किताब के दो पन्ने पढ़ लेना, पुराने गानों की प्लेलिस्ट लगाकर खिड़की के पास बैठ जाना, या फिर बिना किसी गिल्ट के दो घंटे अपनी पसंदीदा मूवी या को एंजॉय करना। आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक और ट्रैक फिलहाल सुनिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट सताक्षी के साथ।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: जी हाँ, सैटरडे की खूबसूरत वाइब्स को एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ, और इस सफर में आपके साथ कुछ जबरदस्त बातें हम शेयर कर रहे हैं। सो अभी एक और ट्रैक के साथ मेरे साथ आगे बढ़िए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन। मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए सैटरडे की वाइब्स में, सैटरडे डिलाइट पर।

जब भी आपके वीकेंड्स आए, चलिए हर वीकेंड ना सही लेकिन मुझे लगता है महीने के दो वीकेंड्स तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए। सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी असली दुनिया में लौटिए। वीकेंड्स की ढलती हुई शामों को एंजॉय कीजिए। देखिए कि शायद वो आपसे ये कहना चाह रही हूं कि आप जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेक लेना आपका हक है। कल संडे है और पूरा दिन आपका है। आज रात सुकून की नींद जरूर लीजिएगा ताकि कल नई सुबह की नई एनर्जी को फील कर सकें और एक नई वाइब के साथ आप आगे बढ़ सकें, एक नए आने वाले वीक को आप एंजॉय कर सकें। बट यू नो, उसके लिए आज से सैटरडे से ही आपको शुरुआत करनी है और अपने इन दो दिनों को कुछ ऐसे जीना है कि इनके साथ आपकी सारी खोई हुई एनर्जी वापस आ जाए। उसी एनर्जी के नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: जी हाँ, सैटरडे पर सताक्षी का साथ आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं मेरे साथ सैटरडे डिलाइट रेडियो ब्रिस्वानी पर। और इस वीकेंड आपके साथ आप ही के बारे में कुछ जबरदस्त बातों का साथ जारी है। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए यूं ही अपने वीकेंड्स पर मेरे और आपके साथ को सैटरडे डिलाइट।

लोग ना जो अपने घरों से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, उनके लिए वीकेंड्स भी कुछ उनके हिसाब से आम दिन हो जाते हैं। देखिए भाई, हो सकता है कि आज आप अपने घर, अपनी फैमिली से दूर किसी देश में, किसी शहर में बसे हों और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हों। आप सोचते हैं कि यार वीकेंड पर क्या करें, क्योंकि जब इंसान अपने परिवार से दूर होता है ना, तो वो फैमिली वालों की तरह अकेला घर में सोना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि यार कोई होता जिसके साथ हंसी मजाक करते, कोई होता जिसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते, ऑफ कोर्स लगता है। लेकिन जो चीजें हम नहीं कर सकते, उनके बारे में खोने से, परेशान होने से अच्छा है जो चीजें हम कर सकते हैं उनको ध्यान में रखा जाए। तो लगाइए अपनी प्लेलिस्ट को अपनी गाड़ी में और निकल पड़िए लॉन्ग ड्राइव पर। खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजार लीजिए, या फिर किसी कॉफी शॉप में जाकर एक बुक लेकर और उसे पढ़िए, थोड़ी देर रीड कीजिए और उस कॉफी को खुद के साथ एंजॉय कीजिए। क्या नहीं है इस बात का गम करते रहेंगे तो जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और ये वीकेंड आपके हाथ में है आपके खुद के साथ एंजॉय करने के लिए। एक और ट्रैक मेरे साथ इसी बात पर सुनिए, एंड स्टे ट्यून्ड। रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: सैटरडे, जी हाँ सैटरडे जो है ये बहुत ही खास और स्पेशल होता है यार। बड़ा सुकून मिलता है जब जिंदगी में आता है ना। पूरे हफ्ते की थकान मन करता है बस एक तरफ रखो यार, इस वक्त तो सिर्फ सैटरडे है। और बिल्कुल बताए ना, कोई हमें इजहार ना करे कोई हमसे कि हम वर्किंग हैं और हमें मंडे को वापस ऑफिस पे जाना है। इस वक्त सिर्फ हम इस लम्हे को जीना चाहते हैं, इस पल को जीना चाहते हैं। आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं तो इस वक्त आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। सैटरडे डिलाइट में आप सताक्षी के साथ हैं और आपके इन लम्हों को हम खास बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपसे कि अभी आपके ये वीकेंड्स बीतने वाले, नाना मतलब गलत बोल दिया मैंने, बिल्कुल नहीं बीतने वाले, अभी तो शुरुआत है और इस शुरुआत को सेलिब्रेट करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट और बने रहिए सताक्षी के साथ।

अच्छा एक बात बताइए, मैं पूछ रही थी आपसे कि हलवा पूरी होती है ना, भेल पूरी भी होती है, खीर पूरी भी होती है, पानी पूरी भी होती है, लेकिन एक चीज है जो पूरी क्यों नहीं होती यार, कि नींद क्यों नहीं पूरी होती है? इसी नींद के लिए हम पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं ना कि सैटरडे आएगा तो जी भर के सोएंगे। हाँ, लेकिन नींद पूरी नहीं होती। सैटरडे के बाद भी संडे को लगता है कि आज और सो लें, और संडे के बाद मंडे जब आता है, देखिए मैंने फिर से बात कर दी ना मंडे की, नहीं करनी थी। खैर कोई बात नहीं, आप नींद पूरी कीजिए और मैं प्ले करती हूँ आपकी नींद वाला गाना। जी हाँ, इस गाने को सुनिए और सुनते सुनते सोते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपने वीकेंड्स को सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट में। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रसवानी।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: सैटरडे पर सताक्षी को एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM पर सैटरडे डिलाइट में। ये जो सैटरडे की ताजगी होती है ना, इसे नॉर्मल मत समझिए। संडे से ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए सैटरडे होता है, बिकॉज फ्राइडे गुजरा है, आप को जो लंबा सा ब्रेक चाहिए हो रहा था ना, आप जो स्ट्रेस में थे वो स्ट्रेस को कम करने का काम करता है आपका ये सैटरडे। सो इसे यूं ही मत समझिए कि यार बस गुजर रहा है, ये पल गुजर नहीं रहा है, ये वीकेंड का वो सैटरडे है जिसकी आपको बहुत तेजी से दरकिनार थी, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, जरूरत थी आपको इसकी, है ना। संडे आते आते आपकी आधी थकान उतर चुकी होती है। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM पर।

दोस्तों, ये था सैटरडे डिलाइट पर सताक्षी का एक और आपके साथ खूबसूरत और प्यार भरा साथ। आई होप कि आपने जरूर इंजॉय किया होगा आज इन लम्हों को और आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो अब आज आपके वीकेंड्स के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आप अपने वीकेंड्स को फुल ऑन एंजॉय करते रहिएगा। और हाँ भाई, कल फरमाइशी गीतों में आपसे मिलूंगी, तो अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ वो गाने जो आप रेडियो ब्रिस्पानी पर फरमाइशी गीतों में सुनना चाहते हैं। आज के सफर से अब लूंगी विदा। हंसते रहिए, मस्त रहिए, वीकेंड्स को एंजॉय करते रहिए और जिंदगी के कुछ हसीन लम्हों को गुजारते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

ना बदला में, ना बदला।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: से जो पर सब पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji no on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आ...

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्ति सागर के इस पावन प्रभाव में आप सभी धर्मप्रेमियों का कोटि कोटि अभिनंदन है। मैं हूँ आपकी साथी और इस प्रोग्राम की होस्ट सताक्षी। आज एक बार फिर से भक्ति सागर में आपके साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। और श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से मिलकर गोता लगाने वाले हैं सनातन ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन, रामायण की पावन गाथाओं और पुराणों की दिव्य कथाओं का। सनातन धर्म केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कला है। ये धर्म हमें सिखाता है, अयम निजा परो वेति गणना, लघु चेत सामम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। आइए इस सुंदर विचार के साथ अपने दिन में केवल

सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान स्वतः ही आ जाता है। रामायण केवल एक इतिहास या महाकाव्य नहीं है, ये तो हर रिश्ते, हर कर्तव्य और हर परिस्थिति में सही राह दिखाने वाली जीवन संहिता है। अब शबरी को ही ले लीजिए। शबरी जो सामाजिक दृष्टि से अत्यंत साधारण थी, लेकिन उनकी भक्ति असाधारण थी। वो हर दिन अपने आश्रम के रास्ते को बुहारती थी, मीठे मीठे बेर चुनकर रखती थी और एक ही आस में जीवन बिता देती थी कि एक दिन मेरे राम आएंगे। जब श्री राम शबरी के आश्रम पहुंचे तो माता शबरी ने बिना किसी झिझक के उन्हें चक चक कर बेर खिलाए और प्रभु राम ने छुआछूत, जाति और ऊंच नीच के सभी बंधनों को तोड़ते हुए उन झूठे बेरों को अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया। और यही बात तो हमें सिखाती है कि भगवान कभी धन, पद या ज्ञान के भूखे नहीं होते, वो तो केवल निश्चल प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। तो यदि आपके मन में निश्चल भाव है तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है।

आप सुन रहे हैं भक्ति सागर रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। भक्ति की अलौकिक लौ जब जलती है तो भक्त का हृदय आनंद और प्रकाश से भर जाता है। वही लौ इस वक्त हमने और आपने अपने हृदयों में जलाई है। आइए बढ़ते हैं आगे इस एक और भक्ति गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ है।

ऋषियों और मुनियों ने पुराणों में कथाओं के माध्यम से गुण ज्ञान को बहुत ही सरल रूप में पिरोया है। श्रीमद् भगवत पुराण की एक अति पावन कथा है बालक ध्रुव की। मात्र 5 वर्ष के बालक ध्रुव को जब उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि अगर तुम्हें पिता के सिंहासन पर बैठना है तो भगवान नारायण की तपस्या करो, तो बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। माता सुनीति ने बदला लेने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे सही कह रही है। अगर जगदीश्वर प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ऐसा पद मिलेगा जिसे कोई नहीं छीन सकेगा। बस फिर क्या था, बालक ध्रुव घने जंगल में गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कठोर जाप किया। उनकी अचल निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन भी दिए और अपनी गोद में भी बिठाया और इसके साथ ही आकाश में अचल ध्रुव तारे का स्थान दिया। जी हाँ, वही ध्रुव तारा जो आज भी आकाश में चमकता है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि आयु, परिस्थिति और साधन कभी आपकी सरलता में बाधा नहीं बन सकते, अगर आपका संकल्प ध्रुव जैसा अटल हो।

भक्ति सागर सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। भक्ति सागर के सफर में सताक्षी आपके साथ है और हम और आप मिलकर अनंत ज्ञान और प्रेम की भक्ति में गोते लगाकर ईश्वर को पुकार रहे हैं। तो एक और स्तुति के साथ चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं, सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रस्वानी पर।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हर रीति रिवाज के पीछे गहरा विज्ञान है। उदाहरण के लिए, सुबह सूर्य को जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं है। जब तांबे के लोटे से गिरती हुई जल की धारा में से सुबह की सूर्य की किरणें हमारी आंखों और शरीर पर पड़ती हैं, तो इससे हमारी दृष्टि तेज होती है और शरीर को विटामिन डी के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इसी तरह से पीपल के वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। मस्तक पर तिलक लगाना हमारे आज्ञा चक्र को शांत और केंद्रित करता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की रक्षा को धर्म से जोड़ दिया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। सनातन धर्म पूरी तरह से प्रकृति और जीवन के अनुकूल बनाया गया एक दिव्य विज्ञान है और इसी विज्ञान को इस वक्त हम प्रणाम कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी पर भक्ति सागर में।

मनुष्य को ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान और प्रेम के मार्ग पर चलना जरूरी है। कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई और संत तुकाराम जैसे महान संतों ने समाज को भक्ति और प्रेम का वही सच्चा मार्ग दिखाया है। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितना गहरा संदेश है ना। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से या खुद को ज्ञानी साबित कर देने से कोई महान नहीं बनता है, बल्कि जिसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए प्रेम, दया और करुणा नहीं है, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है।

तो भक्तजनों, ये था आज भक्ति सागर पर सताक्षी का आपके साथ आनंदमय साथ। आशा करते हैं कि आप सबने भक्ति मार्ग की ओर एक और कदम जरूर बढ़ाया होगा। छोटे छोटे कदम चलते हुए ही प्रभु की प्राप्ति एक दिन हम और आप जरूर करेंगे। बस अपने मन को पवित्र, पावन और निर्मल बनाए रखिए। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आपके सभी दुखों का अंत हो, इसी मंगल कामना के साथ सताक्षी लेती है भक्ति सागर से विदा। जय श्री राम।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ग्रीन सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ग्रीन सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ग्रीन सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य, आपकी सेवा में वेदवाणी।

0: हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। पिछले वेदवाणी कार्यक्रम में हमने आपकी सेवा में गरुड़ पुराण पर आधारित एक इंटरव्यू प्रस्तुत किया था। प्रश्न पूछने वाली श्लोक थी और उनका उत्तर देने वाले हमारे बहुत ही माननीय प्रशांत मुकुंद प्रभु थे। हमने आपके लिए पहला भाग प्रस्तुत किया था, आज हम उसका दूसरा भाग प्रस्तुत करते हैं।
1: 1000 प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में है, जिसमें से मुख्य रूप से हमारे 7 नरकों को मुख्य नरक बताया है। उनके नीचे फिर छोटे ऐसे हजारों नरक हैं। इवन जेल में भी आप जाएंगे ना, बैरक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट जेल होती है। पॉकेट मारने वाले की 3 महीने की जेल छोटी जेल होती है। कुछ जेल होती है जिसमें सुबह जेल में रहते हैं, शाम को छोड़ दिया जाता है। मर्डर वालों को हथकड़ियां डाल के, बेड़ियां डाल के और एक पर्सनल रूम के अंदर फिक्स किया जाता है मर्डरर्स को। तो डिफरेंट डिफरेंट जेल्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नरक है। तो इस नरक के अंदर क्या होता है, महापाप योनियों में जैसे किसी ने ब्रह्म हत्या करी है, ब्रह्म हत्या नहीं, किसी जीव की हत्या करी है, जैसे चींटी मच्छर, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको मॉस्किटो बनना है।
2: नॉन वेजिटेरियन खाने वाले
1: वो तो फिर जो खा रहा है वो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ब्रह्म हत्या का। जब भी आप कोई भी कर्म करते हो, सामूहिक कर्म का फल मिलता है। सामूहिक यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। जैसे अभी एयरप्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, सो उसमें क्या, जैसे किसी ने नॉनवेज बनाया, जिस बुचर ने काटा, जिसने वो ब्लेड बनाया चाकू, उसे पता है ना मैं बुचर नाइफ बना रहा हूं, पर कह रहा है मैं तो नहीं खाता हूं पर बना तो रहे हो। इंटेंशन तो वही है ना, बुचर नाइफ बिके पैसे आए उसी से घर चल रहा है। बुचर नाइफ बनाने वाला जिसने देखा होगा ऑटो में वो नेट के अंदर बंद करके जालियों में मुर्गियों को ले जा रहे हैं, जो ले जा रहा है ऑटो वाला, जिसने नेट बनाया मुर्गी जाली बनाई, जिसने बुचर नाइफ बनाया, जिस बुचर ने काटा, जिसने शॉप रेंट पर दी, जिसने शॉप में खरीदा, घर आके पकाया, पकाने के बाद खाया, जितने भी लोग इस एक
2: साइकिल में इन्वॉल्व है,
1: दे आर कॉल्ड एज सामूहिक कर्म, एक्युमुलेटिव इफेक्ट। अब प्रकृति क्या करेगी, सबको इकट्ठा एक ही एयरप्लेन में चढ़ा देगी, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म से अलग अलग जगह बॉडी ली, सबने उनके कार्मिक रिएक्शंस उसी जीवात्मा के पेंडिंग चल रहे हैं, तो ला करके इकट्ठा एक ही परिवार में जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया तो वो अब एक ही प्लेन या एक ही ट्रेन, एक ही ऑटो, एक ही कार में आ जाएंगे, 4 होंगे तो एक कार में, तो उनका जब वो कभी भी एक्सीडेंट होगा
2: सबके सब
1: खत्म होंगे, बिकॉज ऑफ उन्होंने एक मुर्गे को इसी प्रकार सामूहिक कर्म किया, सबको सामूहिक कर्म का फल मिलेगा।
2: तो प्रभु जी, आपको जो प्लेन क्रैश आपने बात बोला, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सामूहिक कर्म था?
1: बिल्कुल, इतने सारे लोगों को 300-400 लोगों को इकट्ठा एक जगह लाना, तो कोई जैसे आज रेप
2: होती है, में इतना बड़ा हुआ है।
1: रेप होता है जैसे, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, गर्ल को ट्रैप करना, 5 लोगों का आना, किडनैपिंग करना, उसके बाद प्रूफ को घूम करना, चोरी करना, उन वकीलों का जो सहयोग करते हैं जितवाने में कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उन सबको कार्मिक अकाउंट पकड़ लेता है ना। स्वर्ण चोरी करने वाले जो सोना चुराते हैं, उनको पतंगा, कीट, कृमि, जब किसी को दफनाया जाता है तो कीड़े खाते हैं ना, तो उसको कृमि कहते हैं। तो ऑनेस्ट कितने लोग हैं वर्ल्ड में, तो कीड़े बन रहे कि नहीं बन रहे? और जो व्यक्ति मद्यपान करने वाला, अल्कोहल, जिस नरक में उसको तकलीफ दी जाएंगी, तो उस नरक का एक नाम दिया गया है, उसका नाम है तप्त लोह नरक। तप्त लोह मतलब लोहे को पिघलाएंगे, मोल्टन आयरन आपने देखा है कभी, कितना हीटिंग इफेक्ट, 1000 डिग्री प्लस होता है, उतना गर्म लोहा उस यातना शरीर के मुख में डाला जाएगा, जितने ड्रिंक के ग्लास उसने लिए होंगे लाइफ में। अब यातना शरीर में मर सकता नहीं, और पेन 100 times ज्यादा हो रहा है, चिल्ला रहा है, लीव मी, दे विल नॉट लीव यू, उसका नाम ही है तप्त लोह नरक। नॉनवेज बनाते थे, पकाते थे कढ़ाई के अंदर, साथ में होना चाहिए अल्कोहल के साथ में थोड़ा नॉनवेज पकौड़ा, तो वहां पर कुंभी पाकम नरक। कुंभी पाकम में कुंभी है, कढ़ाई है बड़ी, उसमें फ्राई करा, ऑयल हमेशा बर्न जलता उबलता रहता है, जो भी यातना शरीर में आया बोले इसका आज 4 घंटे पकाना है, इसको डाल दिया बॉडी, पकाते थे कढ़ाई के अंदर, साथ में होना चाहिए अल्कोहल के साथ में थोड़ा नॉनवेज पकौड़ा, तो वहां पर कुंभी पाकम नरक। कुंभी पाकम में कुंभी है, कढ़ाई है बड़ी, उसमें फ्राई करा, ऑयल हमेशा बर्न जलता उबलता रहता है, जो भी यातना शरीर में आया बोले इसका आज 4 घंटे पकाना है, इसको डाल दिया बॉडी। आवाज ने वहां पर यात्रा शरीर पड़ा, तलपते हुए जल तेल

0: हो रहा है, यात्रा मिल रही है मानसिक धरातल पर, और वो मन की गति पर कष्ट पाता रहेगा, पाता रहेगा, पाता रहेगा। उसके उपरांत जो मदपान पीने वाला था, जब उसका जन्म होगा, मनुष्य शरीर में आएगा, वो तो ट्रेनिंग पीरियड हुआ नरक में, तो असली कष्ट तो संसार में मिलेंगे।
1: अच्छा, तभी तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है,
0: ट्रेनिंग है, हाँ ये ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग लेके नीचे आया तो गला पूरा छिला हुआ, किसी की आवाज होगी आपने देखा होगा कैसे खराब हो गई, वहां पर लोहा तप्त, लोहा में गरम गरम लोहा खाया पिया है ना, तो सारा गला खर गया है। अब बॉडी के अंदर आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं, विकृत दांत, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाना। तो पूरा इसमें बताया गया है कि जो जो जैसा कर्म करेगा उसको क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना मंत्र के भोजन करता है, यानी भोजन से पहले प्रार्थना मंत्र नहीं बोलता, कौआ बनता है, क्रो, तो पहले उसकी ट्रेनिंग होगी कौआ बनने के लिए, चोंच ऐसी होगी तुमको काय काय करना है, ट्रेनिंग होगी उसके बाद ही तो करेगा। तो ट्रेनिंग इज इन नरक लोका। अगर कोई घर का सामान चुराता है किसी के घर का, तो फिर वो वल्चर इन नेक्स्ट लाइफ, गिद्ध बनेगा। मधुमक्खी के शहद की चोरी करता है, बिना मधुमक्खियों को जलाते हैं, मारते हैं, चोरी करते हैं, एंड वी हैव दैट, बिना पैसे के हमने फ्री में ले लिया, हमारे घर के बाहर भी घूमते हैं, ले लीजिए जी शहद ले लीजिए, तो अगले जन्म में मधुमक्खी बनेंगे। गाय की चोरी करते हैं अगर जो लोग, अगले जन्म में लिजर्ड बनते हैं, छिपकली। तो पहले ट्रेनिंग होगी इन सब की, फिर वो नीचे आएंगे पशु होने। ये मनुष्य आ रहा है वापस, और पूरी लिस्ट है, अभी तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। जो व्यक्ति स्त्री के वस्त्र चुराता है, लेडीज के कपड़े चुरा लिए, उसको श्वेत कुष्ठ होगा, व्हाइट कलर का बॉडी में, जैसे कलर व्हाइट हो जाता है ना, पिगमेंटेशन, डीकलरेशन ऑफ द बॉडी हो गया, श्वेत कुष्ठ होगा उसको। गुरु का अपमान करेगा, जो व्यक्ति अपने अपने गुरु जी को अपमानित कर दिया, तो अगले जन्म में वो बौना होगा, डॉफ डॉफ बनेगा, छोटी हाइट का होगा। धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, उसको सुख नहीं दिया, संपत्ति नहीं दी, तो शब्द वेदी बहरा बनेगा, ही विल नॉट हैव ईयर्स, सुनने योग्य नहीं है। पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री का मैरिटल अफेयर किया, उसके साथ सेक्स किया, अनफॉर्चुनेट जीवन होगा, जिधर भी जाएगा, जो भी कर्म करेगा, इंटरव्यू देगा फेल हो जाएगा, टेस्ट देगा फेल हो जाएगा, मेहनत करेगा बीमार हो जाएगा, खाना खाएगा पेट दर्द होगा, हर जगह उसको अनफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज डन समथिंग रॉन्ग विद दी लेडी इन दी लास्ट लाइफ। और नरक लोक में उसको तप्त लोह में एक तपती हुई बॉडी देंगे, मेलेंक्विन, गरम गरम जलती हुई बॉडी, लेडी की बॉडी देंगे, और कहेंगे लो अभी इंजॉय करो इसको। वो कहेगा मैं नहीं करना चाहता, तो जल रहा है मेरे को छूने में, करा भी करो तुम,
1: करना पड़ेगा,
0: करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कर्म से पहले ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद वरजन, रौरव नरक, रूरू नरक, अंदर तामिस्त्र, तामिस्त्र, कुंभी पाकम, लिस्ट है 1000 नरकों की, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कर्मों के लिए, और सब एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, उसका अलग चल रहा है ट्रीटमेंट 4 घंटे होता नहीं, जैसे वैदिक सेंटर पे भी जाते हैं, ऑयलिंग हो रही है किसी कहीं पर, किसी का मसाज हो रहा है, किसी का हो रहा है, अलग अलग केबिन्स बने हुए, सब जगह अलग अलग चल रहा है ट्रीटमेंट, शाम को रिपोर्टिंग देनी, हाँ इसका 4 घंटे का सेशन हो गया आज, ये
1: कितना टाइम चलता है
0: एज पर द कर्मज। एल्कोहल अगर एक बार पिया लाइफ में, तो एक बार का हुआ ना सेशन, 100 बार 100 बार जो पीता ही रहता था, बैठो जी परमानेंट बैठो, और वहां का टाइम पीरियड यहाँ के टाइम पीरियड से 1 साल का डिफरेंस।
1: अच्छा,
0: वी डू 1 ईयर हेयर 1 डे देयर।
1: माय गॉड, अच्छा। कैजुअल रिलेशनशिप्स, आजकल डेटिंग का बहुत कल्चर चल रहा है यूथ में, राइट, मल्टीपल पार्टनर्स, आजकल मैरिजेस में भी ओपन मैरिजेस चल रहे हैं, इसका बताइए।
0: दे विल बिकम डॉग्स इन देयर नेक्स्ट लाइफ।
1: व्हाई?
0: बिकॉज़ यू हैव सीन डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स, दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स,
1: टेंडेंसी वैसी हो जाएगी,
0: टेंडेंसी वैसी, इसी प्रकार का कष्ट मिलेगा नर्क में, एंड व्हेन दे कम बैक दे विल हैव टू बिकम अ डॉग्स बॉडी। दे थिंक दैट हैविंग रिलेशनशिप विद एनी फिजिकल पार्टनर इज वेरी कॉमन, इज नॉट सो। शास्त्र उसको अधिकार नहीं देते हैं, शास्त्र कहते हैं अगर आपको प्रेम है आप प्रेम करें, उसके बाद विवाह करें, विवाह के बंधन में रह करके कॉम्प्रोमाइज नेचर के साथ में यू कैन एंजॉय द बॉडी, बट आपका प्रोक्रिएशन के लिए विवाह होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, अगर धर्म के विरुद्ध नहीं है तो वो काम भी मैं ही हूं। सो हैविंग सेक्स विद योर वाइफ कम्स अंडर धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि, धर्म के विरुद्ध जो सेक्स नहीं, पर ये तो धर्म विरुद्ध है ना, क्योंकि आपने पत्नी घोषित नहीं किया, आपने इंजॉय किया किसी बॉडी को, और उसके बाद आपने बोल दिया मैं जिम्मेदारी लेने योग्य नहीं हूं, और फिर वो अगर बच्चा हो भी गया तो ऑर्फनेज में दे दिया, अनाथ बना दिया किसी जीवात्मा को, और या फिर लेडी ने कहा मैं सिंगल मदर होकर के जी लूंगी, बट उसने भी तो पिता का हाथ हटवा दिया उसके सिर पर से, तो आदमी औरत बोले कि लेडी मैं तो चाहती थी कि मुझे वो पार्टनर है, लेकिन वो ही नहीं चाहता है, तो तुमने फिर उस क्रिया में गई क्यों? क्या कोई लेडी विदाउट अपनी एग्रीमेंट के इस क्रिया में जा सकती है? तो तुम्हारा भी लिटिल डिजायर तो था, चाहे तुम मुझे फोर्सफुली कुछ भी कह दो, चाहे वो

0: पुरुष की गलती हो या स्त्री की गलती हो, संतान उत्पत्ति हुई है तो ये तुम दोनों की इच्छा से अनुरूप से हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूक्ष्म इच्छा है। सूक्ष्म इच्छा थी एंजॉयमेंट की, लेकिन उसमें फिर यह आ गया, अब तुम्हें लगता है अगर मैं जीव हत्या करती हूँ, अबॉर्शन करती हूँ तो मुझे पाप लगेगा, तो बेटर है कि मैं सिंगल मदर रहकर जीवन काट लूं। पर तुमने उसके पिता का सिर पे से हाथ हटा दिया, एक बच्चे के जन्म होते ही पिता चला गया, स्कूल जाओगे फादर नेम पूछेंगे क्या बोलेगा, तो वो पूरा लाइफ उसकी जो डेवलपमेंट होगा तो उसको हमेशा एक कमी लगेगी, मेरा पिता नहीं था। तो एक लेडी ने अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए एक पूरा जीवन किसी आत्मा का खराब कर दिया।
1: आपने अबॉर्शन की बात की, अबॉर्शन में क्या आउटकम होता है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि कैजुअल सेक्स के वजह से लोग की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है, तो क्या?
0: हाँ, तो जो भी धर्म के विरुद्ध कार्य है अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ मर्डर टू सम जीवात्मा। आप कहें मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, यू आर द बिगेस्ट मर्डरर ऑफ योर चाइल्ड। आपने एक जीवात्मा के जन्म लेने से पहले ही उसको आपने खत्म कर दिया। लोग बोलते हैं 3 महीने का मार सकते हैं, 20 डेज का मार सकते हैं, 30 डेज का मार, एक दिन भी हुआ जीवात्मा आई और शरीर बनना शुरू हुआ, द मोमेंट यू कम टू नो दैट आई एम अ प्रेग्नेंट लेडी, इट मींस ऑलरेडी देयर इज समथिंग इन योर बॉडी विच इज लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग नहीं है। लोगों में आजकल एक है 3 महीने बाद उसमें आत्मा आती है, दिल धड़कता है, ऐसा नहीं होता है। आत्मा आती है तो डेवलपमेंट शुरू होता है, अगर आत्मा नहीं है तो डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है। टेबल कभी छोटी टेबल पैदा कर सकती है, लाइट कभी एक छोटा बल्ब पैदा कर सकती है। वहां जीव आया तब डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब साइकिल रुका, पीरियड रुके, अब आपके बच्चा बनना शुरू हुआ, बच्चा बनना शुरू हुआ, आपने उसे मार दिया, दंड मिलेगा आपको।
1: पुण्य आत्मा की साइकिल पे आते हैं, अभी हमने नर्क की साइकिल समझी। पुण्य क्या?
0: पुण्य आत्मा है, सो वन हु डू गुड कर्मास, यानी उसने अपने जीवन काल में बड़े अच्छे धार्मिक कार्य किए, मंदिर गया, लोगों से मिला, भंडारे किए, सब्जियां बांटी, पूड़ियां बांटी, पानी बांटे रोड पर खड़े होके, लेकिन इसको हम भक्ति नहीं कहते, इसको हम पुण्य कहते हैं। पुण्य और भक्ति में भेद होता है। पुण्य में आप भगवान से कहते हो दे दे, और भक्ति में कहते हो ले ले। भक्ति में आप भगवान को अपना संबंधी प्रियतम मानते हो, तो मीराबाई ने जैसे कहा कि मेरे तो पति हैं, पति रूप में संबंध बना सकते हो भगवान से, वात्सल रूप में यशोदा में जैसे प्रेम है कृष्ण के लिए, जिस प्रकार साख्य रूप में अर्जुन ने भगवान से प्रेम किए, दास रूप में हनुमान जी ने राम से प्रेम किए, शांत रूप में, शांत रस में, तो किसी भी रूप में आप भगवान संबंध जब बनाते हो, हनुमान ने आज तक कभी ग्रुप फोटो नहीं खिंचाया भगवान के साथ, हमेशा नीचे बैठे रहते। क्यों? नीचे बैठेंगे तो भगवान का वरद हस्त हाथ उनके सिर पे रहेगा, तो ये दास की स्थिति है। सो भक्त का प्रेम संबंध होता है, और एक पायस पुण्य आत्मा का धार्मिक होता है, मंदिर जाता है, झंडे भी लगाता है, तिलक भी लगाता है, बट उसके डिजायर होती है दे दे दे दे दे दे दे, जैसे पिता से पुत्र मांगता है, लेकिन जब प्रियतम बन जाते हो तो आप देते हो, क्योंकि वो लव कर रही, प्रेम कर रही है। तो आप भगवान को प्रेम करोगे तो कुछ लेके जाओगे, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, पुष्पमाला पत्र कुछ लेके मंदिर जाऊंगा, तो ये कामना है। अब पुण्य आत्मा का हम साइकिल पढ़ रहे हैं। पुण्य आत्मा का शरीर छोटा, देवदूत जैसे दूत आएंगे, देवदूत जैसे सुंदर दिखने में होंगे,
1: अच्छा
0: ब्यूटीफुल बॉडीज, खींचेंगे नहीं, बोले आप बहुत इतना धर्म किया, इतने मंदिर निर्माण किए, आप अच्छे इंसान है, तो लोकल ट्रेन नहीं, आप एसी कंपार्टमेंट में जाएंगे, सो यू हैव ऑल द फैसिलिटीज। अच्छा बच्चे भी वैसे होंगे पुण्य आत्मा के परिवार में पुण्य करने वाले, जी देखिए हमारे पिताजी का पिंडदान प्रॉपर होना चाहिए, पंडित जी कुछ भी ले लीजिए, बस बेस्ट करिए, बेस्ट से बेस्ट पंडित जी बुलाइए। ओ पंडित जी आकर के बढ़िया पिंडदान, 10 पिंड हो गए, आत्मा की यात्रा शुरू हो गई, बढ़िया प्रीति भोज हुआ, बढ़िया कीर्तन भजन हुए, फोटो पोस्टर्स लगे, शोक समारोह हुए, सब हुआ बढ़िया से हो गया। 13 दिन बाद आत्मा की यात्रा शुरू, 16 स्टेशन पर जब जाएंगे तो बढ़िया, वहां तो फैमिली पंडित जी को 56 भोग खिला रही है बढ़िया से, तो वो फूड का हिस्सा यमदूतों देवदूतों के पास मिलेगा, वो बोलेंगे देखिए आपके परिवार ने भोजन खा लीजिए, स्टेशन पर वो आत्मा आराम से भोजन खाएगी। चलने के लिए आपको इतने बढ़िया उन्होंने दान में जो सुंदर सुंदर जूते चप्पल परिवार में बांटे हैं, तो लीजिए आपके लिए चप्पल है, चप्पल पहना दी, तो ही इज मूविंग इन वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। हर स्टेशन पर कोई हंटर नहीं पड़ रहे, कुछ नहीं, बल्कि मालाएं पहनाई जा रही है कि देखिए पुण्य आत्मा जा रहा है, एक पुण्य आत्मा जा रहा है, चलता रहेगा। नाउ रीच टू दी वैतरणी नदी, 11 महीने में गाय खड़ी है, गौदान भी किया था, हाँ जी गौशाला बनाई थी हमने, अरे वाह वाह वाह, आप गाय की पीठ पर बैठ जाइए, पूछ नहीं पकड़नी, पीठ पर बैठ जाइए, नीचे जो जल है वो सुगंध निकलेगी, उसमें से आप ब्लड सुगंध निकल रही है, सुगंध के साथ वहां पहुंचे तो यमराज भी उनको दिखाई दे रहे हैं, बड़े सॉफ्ट नेचर के। यमराज कह रहे ओ वेलकम, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा जी ठीक है, तो इनका जरा पढ़िए, बोले अरे इन्होंने तो इतने मंदिर बनाए, इतने दान पुण्य के, इतने अच्छे इंसान थे, अच्छा अच्छा, तो इनको फिर कहाँ जाएंगे? बोले देवलोक जाए ना, स्वर्ग, हाँ ठीक है ठीक है, तो स्वर्ग की अदर स्वर्ग लोक चले ऊपर, नरक वाला नीचे गया, स्वर्ग वाला ऊपर चला गया, क्योंकि ये जजमेंट दिया है ना, भूलोक उसके ऊपर स्वर्ग लोक है और नरक साउथ डायरेक्शन में नीचे है, स्वर्ग लोक चला। स्वर्ग गया, आप स्वर्ग में जैसे गए तो एक माला पहनाई, वेलकम, आप इतने पुण्य आत्मा है। देवता के जो लीडर है इंद्र, इंद्र ने बोला भाई इनकी पोस्टिंग कहां करी जाए, तो एज पर दी कर्मा अकाउंट बहुत पुण्य आत्मा होंगे तो साइड पेरिफेरी में रहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं तो इंद्र की कैपिटल सिटी उसका नाम है अमरावती, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, स्वर्ग की कैपिटल का नाम है अमरावती, वहां पर लुफ्त है, सात कुंड है। अच्छा। सब कुछ अच्छे से उनको रखा जाएगा, सात कुंड है जैसे नहाने के लिए, और समुद्र है, एक पर्सनल एरोप्लेन है, फ्लाइंग प्लेन है, देवता लोग उड़ सकते हैं, कभी बुखार नहीं आएगा बॉडी में, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इनको, और हर प्रकार रोज अमृत का एक बूंद पिएंगे ताकि लंबी लॉन्गजीविटी रहे, इनकी लंबी आयु रहे। सभा में बैठेंगे, इंद्र की सभा में बैठेंगे, या जो भी उनको पोस्टिंग में जॉब दी गई है, तुम्हें पेड़ लगाने हैं, तुमको सफाई करनी है, या तुमको मैनेजमेंट देखना, जैस पर दी कर्मास उनको प्लेस किया जाएगा। लेकिन जो माला पहनाई गई थी पहले दिन, ये उतारी नहीं जाएगी, इसके पुष्प रोज सूखेंगे, प्रतिदिन सूखेंगे पुष्प, पुष्प सूखेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे, जिस दिन माला पूरी सूख गई तो फिर उनको किसी पुण्य घर के अंदर जन्म देंगे। तो इसको कहा गया क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, पुण्यों के क्षीण हो जाने पर, पुण्य खत्म हो जाने पर मृत्यु लोक में वापस भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। जो योगी थे, बड़े पायस आत्मी थे, बड़े पवित्र थे, धार्मिक थे, किसी पवित्र घर में, अंबानी से घर में जन्म हो गया, पैदा होते ही वर्कर ही वर्कर है घर के अंदर, जॉब की कोई टेंशन ही नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट का टेंशन ही नहीं, गाड़ियां लगी हुई हैं।
1: एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा उन लोग के साथ,
0: ऑब्वियसली। शुचिनाम श्रीमताम, या तो पवित्र घर में, किसी घर में एकदम पवित्र वातावरण में जन्म होगा, या तो किसी श्रीमताम पैसे वाले घर में जन्म होगा, क्योंकि पुण्य आत्मा भोग कर आया है। अब इसको भोगने में, अब गरीब आदमी को उठा करके एसी में बिठा दो तो ठंड लगती है, अरे इतना हम नहीं खा सकते हैं, इतना सब हम नहीं कर पाएंगे, वो बेचारा घबराएगा। ट्रेनिंग हुई ना स्वर्ग में, राजा इंद्र के साथ में कुंडों में नहाना, हवाई जहाजों में उड़ना, वो ट्रेनिंग हो गई। अब यू लिव लाइफ लाइक चार्टर्ड प्लेन है अपना, पर्सनल जा रहे आ रहे, मीटिंग्स कर रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, रोटी का टेंशन नहीं, चांदी की बर्तनों में खा रहे हैं, सोने के बर्तन है, गिफ्ट दे रहे हैं बड़े बड़े, लिव लाइफ। वो सोच ही नहीं सकते कि नरक भी कुछ होता है, दुख भी कुछ होता है, लिव लाइक दैट। पर मेटेरियल वर्ल्ड के जो कष्ट है वो तो आएंगे ना। जब आप मृत्यु लोक में आ गए तो फायदा क्या, वो नर्क गया वो भी वापस आया, स्वर्ग गया, बस डिफरेंस ये है कि वो गरीबी में आ रहा है, आप अमीरी में आ रहे, पर पेन, मृत्यु, शरीर की कैंसर, डिसीजेस, डिप्रेशन, ये तो आई रहे ना। जो लोग बेटर पोजिशन में जन्म लिए, दे आर कमिंग फ्रॉम स्वर्ग लोक,
1: मतलब फाइनेंशियली बेटर पोजिशन,
0: फाइनेंशियली बेटर,
1: स्पिरिचुअली बेटर,
0: फाइनेंशियली वेरी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, कोई योगी था, स्वर्ग गया, योगिक क्रियाओं से फिर वापिस आया है, तो नाउ ही इज अ वेल बैलेंस्ड, सारा उसका चक्रास बैलेंस्ड है। और एक व्यक्ति है जो निम्न कुल में जन्म लिया, मदिरा में पड़ा हुआ है, शराब किनारे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, वो नर्क से आया दिखाई दे रहा है, वो तो आप परसीव भी कर सकते देख कर किसी को।
1: बट एक और फंडा है कि विवेक, जैसे बहुत सारे योगीज हैं, उनको बहुत इंटेंस डिजीजेस हुई थी, वो अपना कर्मा सारा इस जन्म में ले लेते हैं, हमारे नीम करोली बाबा ले लीजिए, जो भी थे काफी लोग अपने वो भी थे ना शायद से जिनको कैंसर, रामकृष्ण
0: परमहंस,
1: तो इनका कैसे आप लॉजिक बताएंगे?
0: एक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है, वो अपना भी कर्मा लेता है, अपने शिष्यों का कर्मा भी लेता है, कि तुम मुझे दे दो अपना कर्मा, यू बिकम प्योर एंड यू डू साधना, तुम मुझे दे दो, बिकॉज मेरी साधना इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई कैन टेक योर कर्मास, अपनी चॉइस से वो उनके कर्मास को भी ले सकता है, और वो उसको झेलता है, बिकॉज ऑफ साधना, साधना काटती है भजन, भजन जो होता है वो पाप और पुण्य दोनों को माइनस कर देगा। तो इसलिए जो पायस आदमी है उसकी जो यात्रा हम चर्चा कर रहे हैं, आप इसको सुन लीजिए कंसेप्ट को पूरा, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। स्वर्ग गया, स्वर्ग से वापस आया, अब जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है थर्ड, इसकी साधना की गति कैसी है? स्पिरिचुअल व्यक्ति की शरीर छूटा, मरेगा तो कोई भी सन्यासी भी जाएगा, ब्रह्मचारी ग्रस्ता योगी सब जाएंगे। अब जब इसका शरीर छोड़ा तो इसके डिसाइपल्स या इसके फॉलोवर्स या इसके प्रेमी, इसके भक्तजन, योगीज सब आसपास खड़े होंगे, एंड एवरीबॉडी विल चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड, जो भी गति शिवा कृष्णा रामा बोलेंगे, उसको सुनते वो शरीर छोड़ेगा, उसके साथ विष्णु के दूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे, देवदूत नहीं आएंगे, विष्णु दूत आएंगे, शंख चक्र कमल गदा, और फिर वो उसकी बॉडी को लेंगे और एयरप्लेन में रखेंगे, विच इज कॉल्ड एज गरुणा विमान। And we have many examples, Tukaram in Maharashtra, कुछ 500 साल पहले हुए तुकाराम जी मराठी संत थे एंड उनके पूरे विलेज ने उनको गरुण विमान पर बैठकर जाते हुए देखा। उन पर इतनी मूवीज बनती हैं, अभी भी बनती हैं। तुकाराम भजन करते करते गरुण पर बैठे हैं और स्वशरीर अपनी बॉडी के साथ, ज्यादातर लोग तो बॉडी छोड़कर आत्मा जाती है, स्वशरीर जा रहे हैं। भागवत
1: लोगों ने देखा शरीर,
0: हाँ, जाते हुए। तो अभी हम लोग कुछ महीने पहले तुकाराम की उस स्थली पर गए थे जहां उन्होंने गरुण पर, तो वहां पे एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है वैकुंठ गमन स्थली, यहां से वैकुंठ चले गए। तो पूरा विलेज तो वही है, विलेज ने जाते हुए देखा गरुण पर बैठ रहे हैं, तो उनकी वाइफ को बोला गया कि आपके हस्बैंड जा रहे हैं, जैसे मेरी वाइफ को बोलेगा आज आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो कहेगी कि हम तो रोज ही कहीं ना कहीं जाते हैं। तो उनकी वाइफ बोली, हाँ रोज ही कहीं ना कहीं जाते हैं प्रवचन कीर्तन के लिए। तो बोले नहीं नहीं वैकुंठ जा रहे, कह रहे हैं हाँ वो जहां जाता है वैकुंठ ही होता है, लेकिन बाद में जब उसको जब कई लोगों ने बोला आके देखा तो ही वॉज गोइंग बैक एंड ही वॉज सेइंग द मंत्रा अमी जाता आमचा गावा, मराठी में अमी जाता आमचा गावा, मैं जा रहा हूं अपने गांव। तो अपना गांव मीन्स जहां से हम आए भगवान के घर से, तो वहीं वापस जा रहा हूं।
1: अच्छा,
0: तो जो लोग नॉन रिचुअलिस्टिक हैं या नॉन स्पिरिचुअल हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 10-15 लोगों ने ऐसा झूठा भ्रम फैला दिया है और उनको तो किसी ने मर्डर करके फेंक दिया था पानी में, और क्योंकि वो भगवान के बहुत ज्यादा भक्त बन रहे थे तो इस तरह से वहां के जो नॉन रिचुअल लोग ऐसा बोलते हैं। पर जो उनके वंशज हैं, मतलब जैसे मैं अपनी दादी के बारे में सही बताऊंगा, मैं अपने पिता के बारे में सही बताऊंगा, तो उनकी अभी 7वीं पीढ़ी है यहाँ पर। तो आई मेट देम एंड दे सेड आपने बिल्कुल सही बोला है, वो ही उनको वैकुंठ गमन हुआ उनका। तो पांडवाज भागवत के अंदर आता है, जो 5 पांडव थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दे ऑल वेंट टू वैकुंठा। भागवतम के प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 46 नंबर श्लोक में लिखा है, स्व शरीर वैकुंठ गमन किए, सब चले गए। परीक्षित महाराज जो पांडवों के आखिरी वंशज थे, उन्होंने सुखदेव से भागवत सुना, वह भी वैकुंठ गमन किए। तो ये वैकुंठ गमन की पूरी भागवत में आपको वैकुंठ गमन मिलेगा। तो उनका कैसे होता है कि गरुण आता है, उनको फ्लाइट पे बिठाता है और ले जाकर के यमदूत वैतरणी नदी पर, तो गाय की जरूरत ही नहीं होगी, तो फ्लाई में जा रहा है ना, और सीधा यमराज के लोक के वहां पर रुकेगा। तो यमराज के लिए वहां डिसीजन के लिए नहीं रुकेंगे, वहां पर रुकेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि यमराज इज वन ऑफ द 12 महाजनाज, 12 महाजन हैं जो धर्म के नियमों का फेर बदल कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट ही है जो उसके अंदर आगे पीछे कुछ कर सकती है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे ही 12 महाजन शास्त्रों में बताए गए हैं। तो यमराज क्योंकि महाजन है, और एक भक्त जब आता है तो उनको वो वैष्णव ड्रेस में दिखेंगे, धोती कुर्ता विद अ तिलक विद फोल्डेड हैंड्स एंड प्रेइंग थैंक यू सो मच फॉर गोइंग टू वैकुंठा, आई वॉन्ट टू पे माई ओबीसेंसेस, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, आप कितना सुंदर जीवन जिए, भजन किए, अब आप वैकुंठा जा रहे हैं, वह जगत जो कुंठा से रहित है, नो एंजाइटी, कुंठा मीन्स एंजाइटी, वैकुंठा मीन्स नो एंजाइटी, उस लोक में जाने के बाद इस संसार में वापस जन्म मृत्यु चक्र जो स्वर्ग नरक से आ रहा था ना वापस वो साइकिल परमानेंट बंद हो गए। अब आप जीवात्मा सदा वैकुंठ में रहेगी और आनंद में रहेगी, ब्लिसफुल आत्मा, सच्चित आनंद, एटर्नल, ऑल नॉलेजेबल, ऑल ब्लिसफुल, अपने धाम वापस पहुंच गए। तो ये 3 क्रियाओं से मृत्यु के उपरांत होता है। अब जो आदमी जीवन में जैसे कर्म करेगा उसकी वैसी ट्रेनिंग, वैसा रिटर्न।
1: तो अभी वैकुंठ में मुझे थोड़ा सीन बताइए कैसे, जैसे आपने मुझे स्वर्ग का बताया क्या क्या होते हैं, तालाब होते हैं, पर्सनल जेट होता है।
0: जी जी जी जी। सो वैकुंठा एक बार एक शास्त्र है बृहद भागवत मृत, उसमें भगवान कृष्ण जो जब द्वापर में आए तो उनके कुछ ग्वाल बालों ने पूछा कृष्ण तुम कहाँ से आते हो, तो भगवान ने कहा मैं गोलोक से आता हूँ। तो सखाओं से तो मस्ती होती थी, भगवान ने बोल दिया साक्ष्य रूप में गोलोक, करे लाला हमको दिखा सकते हो कहाँ जी गोलोक है, कह रहे चलो दिखा देते, कह रहे कि स्वर्ग से भी ऊपर है, अरे बहुत ऊपर है, चलो फिर दिखाओ। तो सारे ग्वाल बालों को लेकर कृष्ण अपना वैकुंठ लोक गोलोक दिखाने जाते हैं। तो व्हेन दे आर क्रॉसिंग, तो अभी मैं आपको पूरा ऐसे बता रहा हूं, वर्टिकल चार्ट बता रहा हूं, वी आर ऑन द अर्थ प्लैनेट, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पार हो गया तब मेटेरियल वर्ल्ड पूरा हो गया। ब्रह्मलोक के ऊपर देयर इज अ ओशियन कॉल्ड कारण सागर, कारण सागर इज वहां पर भगवान विष्णु का नाम है कर्णोदक्षाय विष्णु, ही इज लाइंग इन दिस फॉर्म आदिशेष के ऊपर, कर्णोदक्षाय विष्णु, एंड उनकी बॉडी से एवरी पोर से एक एक बबल निकल रहा है एंड दैट इज वन ब्रह्मांड, जिसके अंदर हर ब्रह्मांड में 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, हर एक में एक एक भूलोक है, और वो उनकी श्वास से निकल रहा है ऐसे करते हैं और एक ब्रह्मांड बन जाता है, फिर एक ब्रह्मांड बन जाता है, फिर एक ब्रह्मांड बन जाता है। हर ब्रह्मांड में 14-14 लोक है, हर एक में भूमि है, हर एक में स्वर्ग है, हर एक में मून है, हर एक में सन है। ऐसे वो बबल की तरह हवा में एयर फ्लो कर रहे हैं। तब कर्ण सागर के ऊपर जब चलते हैं, सो देन अगेन देयर आर 24 वैकुंठस, 24 वैकुंठ है। उसमें नरसिंहा वैकुंठ, जहां पर आदि नरसिंहा है, नरसिंह रूप में बैठे हैं। देन आदि वरहा वैकुंठा, वहां वरहा रूप में, शुक्र रूप में भगवान बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है। नीचे उनके फॉलोवर्स हैं चतुर्भुज रूप में, 4-handed शंख चक्र कमल गदा लेकर, वर्शिपिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड वरहा। तो इस वरहा से ऊपर 24 वैकुंठ पार करके देन कम साकेत लोक। साकेत में लॉर्ड रामचंद्र इज देयर एंड देयर इज सो मेनी वानर्स एंड सो मेनी सब लोगों की अयोध्या धाम, साकेत धाम में रामचंद्र जी इज मूविंग लाइक अ किंग एंड सारा जैसे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, नित्य उनकी लीला चल रही है। देन आफ्टर साकेत देयर कम्स जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ इज देयर एंड उनके जो जैसे आप उड़ीसा में देखते हैं, भुवनेश्वर में देखते हैं, सेम इज द एटर्नल वैकुंठा में आदि जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। जगन्नाथ के ऊपर जब चलते हैं सो देन कम्स द्वारिका नगरी, द्वारकाधीश जो है, तो वहां पे द्वारकानाथ बैठे हैं और उनकी जो लीलाएं यहाँ पर हुई वो सारी लीलाएं यथारूप ऊपर हो रही हैं। देन कम्स मथुरा धाम, मथुरा में जो मथुराधीश की लीलाएं वहां पे मथुरा धाम, एंड देन उसके ऊपर वृंदावन, गोलोक वृंदावन। तो वहां पर काउज है एंड राधा कृष्ण सिटिंग इन द सेंटर एंड 8 पेटल्स आर देयर इन द लोटस फ्लावर, उनके अष्ट पंखड़ियों पर अष्ट सखियां बैठी हैं। एवरीबडीज पर्पज इज टू सर्व राधा कृष्ण, बस इतना करना है कि कैसे राधा कृष्ण संतुष्ट हो, यही उनके जीवन का भाव है। तो उस उनकी जो पेरिफेरी है उसमें 1000 पेटल्स, फिर 100 पेटल्स, फिर 8 पेटल, ऐसे ऊपर टॉप में है। तो नीचे 1000 में अनेक अनेक जीवात्मा है, उसके ऊपर 100 में है, उसके ऊपर 8 में उनकी मुख्य सखियां हैं, ललिता, विशाखा, सुदेवी, भूदेवी, रंगदेवी, तुंग विद्या, वो सब बैठी हुई है। तो कोई पान खिला रही है भगवान को, कोई चंवर कर रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, दिस इज राधा कृष्ण लोका। सो दिस प्लेनेटरी सिस्टम इज लाइक दिस प्लेनेट, ऐसे ऊपर जा कर्व, ऐसे कर्व है, ऊपर जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है। तो हम जो है कर्ण सागर जो है उसके नीचे असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के बबल के, पृथ्वी के, जिसमें 75% पानी है, उसकी 25% भूमि है, उसमें 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट एशिया, उसकी एक इंडिया, इंडिया की एक सिटी दिल्ली, दिल्ली के पास यहाँ छोटी सी आत्मा वो गोलोक जाने का प्लानिंग कर रही है। तो दैट कैन बी डन ओनली बाय व्हेन यू आर निष्काम, नो डिजायर्स इन लाइफ, तब भगवान के जाने का कुछ क्वालिफिकेटरी सिस्टम है, ये पास करो, ये पास करो, ये पास, उसमें यह है नो डिजायर्स।
1: एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी, आई थिंक व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। एक डच कार्डियोलॉजिस्ट थे प्रभु जी, उन्होंने 3344 कार्डियक पेशेंट्स जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था उनसे पूछा और ये रिकॉर्ड किया उन्होंने। उन्होंने ये देखा कि ये सारे 344 ने कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस बताए कि एक व्हाइट लाइट आती है, हम टनल से गुजरते हैं, कोई बाउंड्रीज होती हैं, कुछ तो सीमा का एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो होता है ना कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाते हो, और मुझे लग रहा है वैसा ही कुछ होता होगा जब एक्चुअली में इंसान लाइफ से डेथ के बीच के ब्रिज में मे भी वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करता होता, ये क्या एग्जैक्टली है?
0: तो नियर डेथ एक्सपीरियंस और एक है साइंस में आउट बॉडी एक्सपीरियंस। मेरा भी एक एक्सपीरियंस हुआ है आउट बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ तो नहीं है लेकिन आउट बॉडी एक्सपीरियंस है। मैं काफी समय पहले की बात है, 2012 में आई वॉज सफरिंग विद सम ईयर डिसीज। तो उस समय ईयर से मेरे ना ब्रेन का लिक्विड बाहर आता था, विच इज कॉल्ड एज सेरिब्रम ऑटोरिया। तो ट्रीटमेंट तो क्या हुआ, उन्होंने क्लीनिंग लीन किया और बोले पता नहीं चल रहा है, इसके लिए तो ब्रेन सर्जन के पास रिकमेंडेशन है, ब्रेन सर्जन देखेगा। तो मेरे को उसमें लिफ्ट में लेकर आए, अचानक ही शरीर से कुछ निकला और नाउ आई एम सिटिंग ऑन द व्हील चेयर बट आई एम सीइंग माई बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ द व्हील चेयर, आई एम सीइंग माई सेल्फ ओनली। मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ, सो मच अटैच होता है ना आत्मा, तो मैं ऊपर अपनी लिफ्ट के टॉप में हूँ और मैं नीचे ऐसे बहुत दूर से ऐसे देख रहा हूँ कि एक लटका हुआ बॉडी ऐसे लटका हुआ है। जब कोई डेथ होती है लटक जाता है ना, ढीला होता है, क्योंकि जैसी आत्मा निकलती है आदमी ढीला हो जाता है। तो मैं ऐसे हो गया, तो मेरे साथ जो रिलेटिव करते वो ऐसे करके स्लैप करने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे दिख रहा है कि वो लेकर दौड़ रहे हैं, आई एम फॉलोइंग लाइक अ कैमरा ड्रोन, उनको कैरी कर रहा है, पीछे पीछे जा रहा है। इमरजेंसी में ले जाकर एक बेड के ऊपर लिटाया और वो शॉक्स होते हैं ना, वो मैग्नेटिक शॉक्स लगाए। तो मैं अभी भी ऊपर हूं और मैं देख रहा हूं लगा रहे हैं और बॉडी ऐसे पड़ा हुआ है और जो डॉक्टर्स मुझे ट्रीट कर रहे हैं वो सारे आ गए वहां पर। देन अगेन वो लगा रहे हैं, फिर एक झटका आ रहा है, फिर लगा रहे हैं, फिर झटका आ रहा है, ऐसे 2-3 बार हुआ। थर्ड टाइम उन्होंने कहा लास्ट चांस, अगर टक किया तो जो टॉप शॉट था ना वो वापस इन शॉट हो गया और मैं फिर डॉक्टर को ऐसे देख पा रहा हूँ अपने, और मैंने देखा और वॉमिटिंग किया, डॉक्टर बोले रिवाइव हो गया, रिवाइव हो गया। एंड फाइनली बाय द मर्सी ऑफ गॉड आई वाज सेव्ड, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस था। सो ये मैं जानता हूं कि उस समय अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे टनल दिख रहा है या ये दिख रहा है, सबके डिफरेंट अनुभव होते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको 13 दिन तक उसी स्थान पर रहना होता है। तो लोग स्टोरीज बताते हैं कि मैं मर गया था, फिर मैं यमलोक चला गया, फिर वहां बोले टाइम नहीं है, फिर वापस भेज दिया। ऐसा नहीं होता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शास्त्र इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे और हम हर चीज शास्त्र से चलते हैं। शास्त्र कहते हैं 13 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु होती है। सो मैंने भी अनुभव किया कि आई वॉज फॉलोइंग माई बॉडी, इतनी आसानी से अपनी बॉडी छोड़ी नहीं जाती है।
1: आदमी ऐसा नहीं कि अभी मर गया
0: और मेरे को बॉडी से डिटैचमेंट हो गया, मैंने उड़ गया अपने हवा में, ऐसा हो नहीं सकता है। इतने साल आप रहे हो, 60-70 साल, आपकी अंगूठी होती है, पेन होता है, उससे अटैचमेंट हो जाता है, मेरा पेन, मेरा बोर्ड, मेरी रिंग, आप इस बॉडी में हो उससे अटैचमेंट नहीं होगा। जब जलती है ना, रोता है वहां बैठ के क्रिमिनेशन ग्राउंड में, मेरी बॉडी को मत जलाइए, प्लीज मत जलाइए। और एक बच्चे का भी यहाँ पर IBM 7 ने रिकॉर्ड किया था, उसका पुनर्जन्म का, बल्लभगढ़ फरीदाबाद पलवल के पास उसका रीबर्थ हुआ है। तो उसने बताया उसका एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर से, वो बच्चा बताता है कि मैं निकला शरीर से और जब 13 दिन तक मैं अपने घर के पास रहा, तो गरुण पुराण में जो लिखा है तो वो उसकी बात मैच हो रही थी। उसने गरुण पुराण नहीं पढ़ा है, वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, और मैं गरुण पुराण पढ़ रहा था तो मुझे वो एक्सपीरियंस मैच हो रहे थे कि 13 दिन तक का बोल रहा है, इसका मतलब सही बोल रहा है।
1: अभी 13वीं होती तभी 13 दिन होता है।
0: 13 दिन होते हैं।
1: योगिक शास्त्र में ये भी कहा है ना कि जैसे 5 वायु होते हैं, तो पहले अगेन व्यूअर्स के लिए आप मुझे बताइएगा मैं जहां गलत हूं, फर्स्ट 21-24 मिनट्स कहते हैं समान वायु निकलती है, उसके बाद 48-64 मिनट्स आपकी प्राणवायु निकलती है, उसके बाद आपके करीब 6 और 12 घंटे के बीच में उद्यान वायु निकलती है, फिर व्याना, फिर अपाना।
0: अपाना
1: तो ये करीबन 13 दिन का प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से प्राणवायु तक हम बॉडी को रिवाइव भी कर सकते हैं। योगीज ने रिवाइव किया हुआ है बॉडी को,
0: किया हुआ है।
1: क्या आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बता सकते हैं?
0: देखिए, रिवाइविंग के तो हम वो नहीं कहेंगे, क्योंकि रिवाइव करना ठीक भी नहीं है। मैंने जैसे बताया मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ एक्सपायरी डेट फिक्स है। अगर आप कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस या सिद्धि से उस शरीर को पुनर्जीवित करते हो तो उसके लिए वो दुखदायी होगा। जैसे उस बच्चे ने बताया कि जब मैं शरीर से निकला तो मुझे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया दिल्ली के अंदर।
1: ये भी मैंने बहुत सुना है।
0: तो तांत्रिक ने जब मुझे कैद कर लिया तो मैं उसकी बॉटल में बंद रहा, और मैं ये सोच रहा था कि वापस मैं कैसे निकलूं। तो एक दिन उसकी बॉटल हवा के जोर से गिर गई, ब्रेक हुई, तो मैं आजाद हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग बैक टू माय होम, लेकिन वहां तब तक तो मेरी बॉडी जल चुकी थी, सब हो चुका था, तो अब मैं जाऊं कहां?
1: अगर तो बॉडी नहीं जलती तो क्या करता?
0: तो रिवाइव करता ना, वो आत्मा घुसने की कोशिश करती ना, और घुसती तो वो क्या करती, लोगों को परेशान करती, क्योंकि वो एक्सटर्नली अब दोबारा रिवाइव कर रही है, जो कि उसकी नेचुरल डेथ के टाइम से एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं।
1: तो आपने कहा एक तांत्रिक था, उसने इसके सोल को कैप्चर कर दिया, इसलिए कैप्चर किया होगा?
0: इसलिए कैप्चर किया कि अपने कर्म पूरे कराना, जैसे मैंने बोला ना,
1: अच्छा,
0: किसी और पोजेशन बॉडी, किसी और पे चढ़ा करके मुझे उसके मन को केंद्रित करना है, उसको वशीकरण करना है, अपने कर्तव्य करवाने हैं। सो ये जो सोल्स होती हैं, इनके पास बॉडी तो होती नहीं, पर दे कैन डू द वर्क। जैसे मतलब मुझे फ्लैश कार्ड खेलने हैं और मुझे पता करना है उसके फ्लैश कार्ड में क्या है, तो मैं बोलूंगा उधर खड़े होकर के बताओ मेरे को, बिकॉज तांत्रिक कैन सी दी सोल ना, तो वो बात कर रहा है, बोले बताओ, बोलेगा जी इक्का बोल दो, तो इक्का बोल के जीत जाएगा वो।
1: ऐसी चीजों के लिए यूज,
0: नेगेटिव चीजों के लिए यूज करते हैं, वशीकरण के लिए, लड़की के ऊपर चढ़ जाओ, बोलो शादी के लिए हाँ बोल दे, बोलेगी हाँ बोल देती हूँ।
1: ये डिसएम्बॉडीड बीइंग से कराते हैं।
0: हाँ, उसी से कराते हैं, और कैसे तांत्रिक, और ये तो मैंने बोला ये सिद्धि का क्या फल है जो लोगों के लिए कष्टकारी है, वशीकरण करना, टॉर्चर कर रहे हो आप किसी को।
1: और इनकी लेकिन डेथ बहुत पेनफुल होती नहीं तांत्रिक की?
0: बहुत बुरी। अभी एक थे वो हमारे जानकार थे, ये उन्होंने गोरखनाथ सिद्धि करी थी, तो उसने कुछ सोल भेजी थी किसी को मारने के लिए। वो सामने वाला व्यक्ति पावरफुल था, वैदिक था, वैदिक होने के कारण वो सोल उसको अटैक नहीं कर पाए, वो बोली हम तो निकल गए, अब वो री अटैक करने उस पर आई, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 41 ओनली, उसको आकर के सोच ने री अटैक कर दिया। इसलिए तांत्रिक विद्याएं या जो भी विद्याएं हैं देखने में बड़ी अट्रैक्टिव लगेंगी कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पैसा आ सकता है, पावर आ सकती है, कोई भी हमारा हो सकता है, किसी का नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, बट ये तो सारा डिस्टर्बिंग सोसाइटी की कुछ कार्मिक रिएक्शन चल रहे हैं ना, नेचुरली भगवान के विधा है, आप उस विधा में इंटरफेयर करके अपनी विधा से उसको परिवर्तन करना चाह रहे, इट मींस यू आर इंटरफेयरिंग द इकोलॉजिकल सिस्टम।
1: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्रिवेंट कैसे करें? जैसे मेरी कल सोल है, मैं निकल गई, अब मेरे को कोई तांत्रिक ने ट्रैप कर दिया, कोई
0: उसके लिए तो हम जो वैदिक क्रिया करेंगे, अच्छा, शमशान में,
1: ओके,
0: पिंडदान, अच्छा, पूजन, 13वीं, वो इसीलिए होता है ताकि कोई आत्मा ट्रैप ना कर सके।
1: अच्छा, उसके लिए होता है, ओके। एक कॉन्सेप्ट है प्रभु जी भैरवी आत्मा का, लाइफ टाइम्स ऑफ कर्मा बिगिन टू प्ले आउट एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही इंटेंस मोमेंट में।
0: भगवान गीता में बोलते हैं अंत काले चमामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अंत काल जब आता है तो उसमें एक पूरी पिक्चर चलती है LCD स्क्रीन के ऊपर, वॉट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, दिस लाइफ, तो सारा का सारा दिखाते हैं। पूर्व में तुम स्त्री थे, तुम्हारी आसक्ति एक पुरुष में थी, तुम पुरुष बने, तुमने पुरुष बन करके ये कर्म किए और अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा यहां समाप्त हो रहा है। क्या तुम निश्चय करते हो अगले शरीर में जाकर के अब तुम सटल हो गए? तो आदमी कहता है मैंने तो इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, मेरी तो मुक्ति ही नहीं हो सकती है। बोले कम से कम अभी भगवान का नाम बोलो, अंतकाल में भगवान का नाम बोलो। लेकिन उसका एनवायरमेंट ही नहीं है, बाहर कोई बोल ही नहीं रहा, तो वो आजीवात्मा तो शरीर छोड़ ही रही है तो बोल ही नहीं सकती है। अंतकाल में सारी कार्मिक अकाउंट आगे खड़ा हो जाएगा, जितना झूठ फरेब जो भी किया। इसलिए कहते बचपन से कौमार आचरित प्रज्ञा, अब कौमार अवस्था से बच्चे को वैदिक क्रियाओं में लगा दो, ताकि जब उसका अंतकाल जब भी आए तो उसके दिमाग में जो उसने वैदिक क्रियाएं करी, यज्ञ किए, पूजा करी, धाम किए, तीर्थ किए, जो भी किया वो सब एक्युमुलेट होकर के इकट्ठा उसको आएगा, देन ही कैन टेक आउट द गॉड्स नेम। और अगर उसने अंत में स्मरण नहीं किया तो उसका, आपको बताया मैंने कि उसकी फिर योनि परिवर्तन हो जाएगा। बताते हैं कि एक राजा थे, वो राजा की इच्छा थी, राजा ने बड़े इतना उत्तम स्थिति में पहुंच गया था कि उसको भगवान के धाम जाना ही जाना था। लेकिन उसकी जब शरीर छोटा, उसका मंत्री उसको जानता था कि बड़ा वैदिक व्यक्ति है। अब जब राजा का शरीर छोटा, उसने बोला देवता लोग ना पुष्प वृष्टि करेंगे, फ्लावर्स गिरेंगे ऊपर से, देखना सारे राज्य इकट्ठा हो गया, राजा जी जाने वाले हैं, क्रॉनिक डिसीज हो गया है, तो जरूर पुष्प गिरेंगे क्योंकि धाम को जाएंगे, बड़े नेक राजा है। पर देखा कि एक भी पुष्प नहीं गिरा, तो मंत्री को बहुत बुरा लगा कि राजा के वर्ड्स पूरे नहीं हुए और अब सारा राज्य उनको गलत राजा मानेगा, झूठ बोला मानेगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा राजा इतने ज्ञानी थे, ऐसा क्या हो गया, इन्होंने सारे अटैचमेंट छोड़ दिए थे, कुछ तो अटैचमेंट था जिसके कारण इनको पुष्प वृष्टि नहीं। देखा तो उनके राज्य में जहां शरीर छूटा उसके वहां पर एक विंडो थी, खिड़की, खिड़की के बाहर एक बेर का पेड़ था। अब राजा को बेर बड़े पसंद थे खाना, कह रहे हैं इनको बेर पसंद थे, कहीं बेर देखते हुए शरीर छूटा, बेर में कीड़ा तो नहीं बन गए? अब 13 दिन तक की 13वीं हुई जब वो आत्मा को डिसीजन हुआ, और फिर उस मंत्री ने क्या किया, सारे समाज को बोला कि अभी 1 वर्ष बाद हम लोग राजा की जो बरसी करेंगे ना उसमें बेर की भोजन लगाएंगे। सारे बेर तुड़वाए उस पेड़ पर जितने थे और सबको चिल्ला बोले इसमें अगर कोई कीड़ा निकले तो मुझे बताइएगा। तो एक बेर में कीड़ा निकला, तो उन्होंने कहा कि इस कीड़े को मैं मारने का पाप ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप कीड़े को भी मारते तो आपको कीड़ा बनना पड़ेगा, मैं कीड़े को मारने का पाप ले रहा हूं लेकिन मैं राजा की मुक्ति चाहता हूं। तो उसने वो कीड़े को मारा, आकाश से पुष्प गिरने लगे। लिटिल अटैचमेंट टू द फूड ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो कैन ब्रिंग यू बैक टू दिस मेटल वर्ल्ड। माय गॉड,
1: प्रभु जी मेरे पास क्विक रैपिड फायर है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, स्लीप में मरना,
0: हाँ,
1: क्या एक अच्छी डेथ माना जाता है इसको?
0: देखिए एक्सटर्नली और इंटरनली दो प्रकार की डेथ है। एक्सटर्नली आदमी सोचता है कि मुझे ज्यादा कष्ट ना हो, सोते सोते मृत्यु आ गई, हार्ट अटैक हुआ रात में, अरे पिताजी की बड़ी अच्छी मृत्यु हुई, रात को सो रहे थे चले गए, किसी की रोड पर हो गई, बड़ी कष्टकारी मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हो गया, तड़प तड़प के मरना पड़ा हॉस्पिटल में। इन बोथ द केसेस डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु दोनों केस में आ रही है। तो एक्सटर्नली जो आप कह रहे हैं ठीक है कि हर आदमी सोचता है कि मेरी थोड़ा सिंपल, ज्यादा कष्ट ना हो, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों केसेस में आपको पता नहीं चल रहा, कष्ट तो सोल को हो रहा है। सोल को किस चीज का कष्ट होता है? शरीर का कष्ट नहीं होता, सोल को कष्ट होता है अटैचमेंट का। कहते हैं जब मृत्यु आती है 40,000 बिच्छू डंक मारे इतना कष्ट होता है।
1: अच्छा,
0: एक जगह पर स्कॉर्पियन मारे तो कितना दर्द होता है, स्कॉर्पियन बाइट, 40,000 स्कॉर्पियंस लिखा है, 40,000 बिच्छू डंक मारे इतना पेन होता है जब सोल को बॉडी से अलग करते हैं,
1: हर सोल को,
0: हर सोल को। और एस्ट्रिक मार्क में नीचे लिखा है जिसका जितना ज्यादा अटैचमेंट संसार से है, प्रपंचिक संसार में ही रचे पचे हैं बच्चे, परिवार में, प्रपंचिक संसार में रचे पचे हैं उतना ज्यादा, एंड यू आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फ्री मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
1: सोल रीबर्थ का सबसे छोटा टाइम क्या होता है और सबसे बड़ा टाइम क्या होता है?
0: सबसे छोटा टाइम है 4 ईयर्स।
1: अच्छा, मिनिमम 4 ईयर्स वो लेगा रीबर्थ होने में सोल?
0: 1 साल तो ट्रेवल,
1: हाँ,
0: 1 साल के बाद में उसका बरसी जब कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में उसकी प्लेसमेंट टू दी नर्क, स्वर्ग, और एक लोक है जिसकी हमने चर्चा नहीं की, पितृलोक, जिसमें पितृ श्राद्ध का भोजन पहुंचता है। सो पितृलोक जो है दैट इज अ वेटिंग स्टेशन, स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन आई नहीं है, आपका टिकट भी बुक है, 4 घंटे 5 घंटे लेट है, तब तक आप क्या करोगे? वेटिंग रूम। सो पितृलोक इज अ वेटिंग रूम बिफोर गोइंग टू नर्क और स्वर्ग। डिसीजन ही नहीं हुआ, इतनी लंबी फाइल है, संयमपुरी लोक में आप पहुंचे, वो बोले यमराज बोले कि रुको अभी इसका निर्णय होने में टाइम लगेगा, इनको पितृलोक में बिठा दो थोड़ी देर के लिए। तो पितृलोक में बैठ जाना इस वेटिंग स्टेशन। इसलिए जो यहां श्राद्ध का भोजन लगाते हैं, लोग बोलते ना अरे वो तो मर गए होंगे, वो पता उनको हमारा मिलेगा, अरे तो अभी तो नरक में भी नहीं गए स्वर्ग में भी नहीं गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा उस आत्मा की, अभी तो वेटिंग में ही है, तो उसको भोजन कौन देगा? वही फैमिली के जो लोग हैं, वही डिसेंडेंट्स ही उसको अपने एंसेस्टर को भोजन देंगे। तो वो पितृलोक का भोजन जाएगा कैसे? ये क्रिया सूक्ष्म होती है। जैसे इंडिया में बैठा व्यक्ति अमेरिका में अपने बच्चे को 10 लाख रुपए देना चाहता है, इंडियन करेंसी में डालेगा, वहां उसको डॉलर में निकल जाएगा। क्या पैसे ऐसे उड़ उड़ के जा रहे हैं अमेरिका? ट्रांसफर हो रहे हैं एक्सटर्नली तो नहीं दिख रहा ना, आपने तो इस बैंक में दी, इंडियन बैंक में। वो इंटरनली क्या हुआ? इंटरनेट से उसके बैंक में शो हो रहा है कि आ गए। अब वो जब पेटीएम या एटीएम में डालेगा कार्ड, तो उसको करेंसी डॉलर में निकल रही है। तो श्राद्ध का भोजन पूड़ी सब्जी आलू रोटी जो भी बनाया ब्राह्मण को या गाय को दिया इंडियन, अब सूक्ष्म माइग्रेशन हो रहा है वाया एयर मीडियम, दैट भोजन इज गोइंग टू योर पित्रा, और वो वहां पर जब निकालेगा तो उसको उसके भोजन के रूप में मिल जाएगा।
1: फैमिली मेंबर्स रोते हैं जब किसी की डेथ होती है, पर सोल को ये रोना पसंद नहीं आता।
0: हाँ, नहीं पसंद है, क्योंकि जो हमारे टीयर्स होते हैं ना, दे बिकम कफ, जैसे कफ है ना, हम उसको स्पिट करते हैं, कफ को पीते खाते नहीं है, पर सोल को टीयर्स जो है कफ रूप में खाने पड़ते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए जब परिवार में शरीर छूट जाता है रोना नहीं चाहिए। जितना आप रुदन करेंगे उतना ज्यादा सोल को कष्ट होता है, कफ रूप में उसको भोजन मिलता है, गरुण पुराण कहती है। पर इमोशनल एंगल भी देखें आप, जो मैंने फील किया है, छोटे बच्चे को प्रेप में छोड़कर आओ भाई, उसको स्कूल हम ही भेज रहे हैं, अब बच्चा चाह रहा है कि माँ मेरे साथ रुक जाए, तो माँ छोड़कर आती, बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, माँ को बिल्कुल मन नहीं करता, हार्ट बड़ा हार्ट टोन हार्ट बनकर आती है। 2 घंटे बाद सर मैडम को फोन करती है, हाउ इज डूइंग, क्यों फोन करती है? पता करने के लिए कि सेटल हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली जीवात्मा है जो परिवार में होती है, शरीर छोड़ती है, तो उसको जब रोते हैं तो बहुत कष्ट होता है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पूछती है भाई सेटल करने के लिए कोई नहीं है क्या, कोई तो इनको गीता भागवत गरुण पुराण सुना दो, बहुत नहीं रो रहे हैं और ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्न।
1: अच्छा,
0: वेरी नाइस, कितने तेरे को संस्कार, कितने समझदार थे। जैसे एक चीज और है, द मोर यू आर अटैच यू विल कम बैक अगेन द सेम फैमिली।
1: इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अच्छा,
0: सेम फैमिली में लोग खुश भी होते हैं, देखो दादाजी से दिख रहा है, अरे दादाजी वापिस आ गए, आत्मा तो अच्छा हुआ, उनको मुक्त होना चाहिए था, वो वापिस आ गए, कर्म बंधन ऐसा वापिस ले आया। इवन टू दी रेप्टाइल्स इन अवर फैमिली, लिजर्ड्स हैं ये है, कोई दादी हो सकती है जो असक्त थी पर कर्म इतने नहीं थे कि मुक्त हो जाए, तो लिजर्ड बने के लिए रहूंगी उसी परिवार में।
1: अच्छा,
0: सो इसलिए आसक्ति बहुत बुरी चीज है। एक बार एक छोटी सी स्टोरी बताकर मैं एंड करता हूं। व्यक्ति था, वो हरिद्वार पे रहता था, जप करता था, तप करता था, ध्यान करता था, योग क्रिया करता था। तो नारद मुनि निकले, नारद मुनि भगवान के पास गए, भगवान इतने दुनिया में लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, हठ योगा, आप लाते क्यों नहीं उनको अपने धाम में? भगवान बोले वो ऊपर से कर रहे हैं, अंदर से कोई नहीं आना चाहता। नारद जी बोले कैसी बात करते, मैंने देखा एक आदमी एकदम आंख बंद करके दिन रात लगा हुआ जप कर रहा है, ट्राई कर लो। नारद जी उसके पास गए, उसको दिखने लगे, बोला अरे नारद मुनि आपको शास्त्रों में पढ़ा था, मुझे दिख रहा है, थैंक यू फॉर कमिंग। बोले तुम्हारे को भगवान ने बुलाया है, चलोगे? कह चलना तो चाहता हूं, पर अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो मेरा भी बहुत पूरा प्लानिंग है, मैं जाऊं भगवान के धाम, लेकिन बच्चों की प्लानिंग एक बार आप थोड़ा सा काल मुझे दे दीजिए। नारद मुनि बोले ठीक है। नारद मुनि ऊपर चले गए, अब ऊपर का मैंने बताया वहां तो 1 मिनट, यहां का कई मंथ्स निकल जाएंगे, वो एक क्षण के लिए ऊपर गए, वापिस आए तो यहां वर्ष निकल गए। नारद जी वापिस आए तो देखने लगे उस घर में वो आदमी नहीं दिख रहा, जप करता था, ध्यान लगाया त्रिकाल, अपनी ज्ञान से उन्होंने देखा, सर्वज्ञ नारद मुनि ने, अरे उसी घर में एक बुल बन गया, बैल। तो बोले अरे तुम बैल बन गए हो काशीनाथ जी? नारद जी कह रहे अब तो तुम फिर भी गऊ योनि में आ गए हो, मनुष्य योनि से, मतलब रिवर्स साइकिल चल रहा है, जो कऊ लास्ट योनि से मनुष्य गया, मनुष्य से काऊ बन गया। बोले अब तुम काऊ बन गए, रिवर्स योनि में चले गए हो, अब तो चलो भगवान बुला रहे। कह रहे आपकी बड़ी कृपा हुई, बच्चों की शादी हो गई। नहीं, शादी के बाद ऐसे हो गए कि घर में बड़ी गरीबी आ गई है। किसान के खेत में काम करने के लिए ना ट्रैक्टर है ना बुल है, तो एक साइड मेरा बेटा लगता है, एक साइड मैं लगता हूं, तो मिलकर हम खेत जोतते हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिए, एक बार अनाज उत्पन्न होने लगा, फिर मैं आपके साथ ही चलूं। मैंने क्या करना, भगवान के घर ही जाना? नाराज जी फिर चले गए। फिर ध्यान लगाया, वापिस आए तो देखा कि उसी घर में एक डॉग बनकर बैठे हुए। कह रहे अरे आप डॉग बन गए हो काशीनाथ, ये क्या क्या और नीचे होनी में आ गए। कह नाराज जी आपकी बड़ी कृपा हुई, इस बार बहुत अच्छी फसल आई, इतना पैसा आया, बच्चे इतने लापरवाह हो गए, घर में ताला भी नहीं लगाते चले जाते हैं, तो मैं बाहर डॉग बन के घूमता हूं गली में ताकि मेरे बच्चों को घर के अंदर चोरी ना हो। चलोगे काशीनाथ? क्या थोड़ा समय दे दीजिए, एक बार बच्चों को मैं बना दूं ना थोड़ा संस्कारी समझदार, फिर चलूंगा। ठीक है चल। वीक्षण वाद आए, यहां कई वर्ष बीत गए, अब देखा कुत्ता भी नहीं है। फिर ध्यान लगाया तो पता चला कि वो जो घर की अंदर जो फूड ड्रेन होती है ना, नाली घर की, खाने की सिंक किचन की, उसमें कॉकरोच है। तो बोले अरे काशीनाथ तुम कॉकरोच बन गए हो, अब तो चलो। कह रहे नारा जी मैं तो चलना चाहता हूं, लेकिन ना इसके अंदर जब खाना खाते मेरे बच्चे तो अन्न छोड़ देते हैं थाली में, इनके बच्चे इतने लापरवाह हैं, इनको नहीं पता अन्न में अन्नपूर्णा है, और अन्न अगर नाली में गया तो अपराध होता है अन्नपूर्णा का, इनको पाप लगेगा, इसलिए मैं कॉकरोच बन के इनका अपराध खत्म करके वो अन्न ड्रेन का सारा खा जाता हूं। सो थोड़ा समय दे दीजिए। थोड़ी देर में उसका वो आया बच्चा, उसने देखा कॉकरोच, पापा कॉकरोच घर में। अब वो तो दादाजी थे, बच्चे का बच्चा आया, उसने एक डंडा लिया कॉकरोच को मारने के लिए, भागा पीछे भागा, हिट लिया ये लिया वो लिया, सिक सिक करके ता मार दिया उसको। तब वो आत्मा बाहर निकली। तब नारद जी बोले अब चलोगे कि और पिटना है अभी? कहे नारद जी अब समझ गया कोई किसी का नहीं होता, देन ही लिबरेट। सो वी आर सो अटैच्ड, वी डो नॉट वॉन्ट टू गो। जितना भी हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ये सब वर्बल रहता है, इंटरनली चेंज नहीं होते कुछ भी। सो वंस हु वांट्स दैट लिबरेशन उस पाथ पे चले तो निश्चित रूप से उसकी एक अच्छी मृत्यु हो सकती है, संसार चक्र मुक्त हो सकता है उसका।
2: तो आप सुन रहे थे गरुड़ पुराण पर आधारित एक इंटरव्यू को प्रशांत मुकुंद प्रभु और श्लोक के मध्य में, और अब आप सबकी सेवा में कुछ भक्तिमय कीर्तन।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630543836305।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बानी AM।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनका।
2: आप सब सुनने वालों को फिरोज खान का नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सासिकार, एक बार फिर इंतजार करने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान, इस स्टेशन पर हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक अक्सर हम अपने प्रोग्राम को तैयार करके लाइव आपके लिए पेश करते हैं अपने स्टूडियोज मेंसफील्ड ब्रिस्बेन से। अनफॉर्चुनेटली टुडे आई हैव बीन बिजी, सो आई हैव कंपाइल्ड आई प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम फॉर यू इंस्टेड ऑफ प्लेइंग रैंडमली सिलेक्टेड प्लेलिस्ट। I know a lot of you people take time out to listen to me from 10 to 12. So if I'm unable to come live with you, I'd still like to give you some old programs from my collection of the last 30, 40 years. One of the things I encouraged over the years, people to write script